मातृ वंदना के बाद प्रभाती वंदना कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए भजन सुरेश वाडकर की आवाज में। तन तो भगवान की सेवा में मन करता पूजन।

0: हरिहरन के गाए इस भजन के साथ ही प्रभाती वंदना कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है अग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें अंडमान तथा निकोबार द्वीपों में अनानास के वर्ष भर उत्पादन के संदर्भ में। अनानास जो कि एक उष्णकटिबंधीय फल है, इसमें विटामिन ए, विटामिन बी तथा विटामिन सी और खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि पर्याप्त मात्रा में होता है। हमारे द्वीपों की जलवायु में इसको उगाने के लिए किसी विशेष तकनीक की ज़रूरत नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ की जलवायु अनानास की खेती के लिए उपयुक्त है। इन द्वीपों में अनानास का उत्पादन वैसे बहुत कम है, लेकिन इसके ताज़े फलों की मांग बाजार में हमेशा रहती है। हमारे यहाँ पर साधारणतः क्वीन व क्यू किस्में उगाई जाती हैं। क्वीन किस्म बहुत बढ़िया है, जिसके पत्ते कंटीले तथा किनारे कटे होते हैं। फलों का आकार छोटा होता है तथा औसत भार 1.25 किलोग्राम पाया गया है। फल के ऊपर क्राउन छोटे आकार के होते हैं। इस फल में बहुत सारे स्लिप्स और सकर्स बनते हैं, जो कि प्रवर्धन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जहां तक क्यू किस्म का सवाल है, क्यू के फलों का औसत भार 2 से 2.25 किलोग्राम तक का होता है। फलों का बाहरी रंग गहरा हरा होता है, लेकिन पकने पर हल्का पीला हो जाता है। कभी हरी धारियां भी बन जाती हैं। गूदे का रंग हल्का पीला, फल रसीला तथा अच्छी खुशबू वाला होता है। किसान भाइयों, क्यू किस्म में प्रतिवर्ष प्रति पौधा सिर्फ 2 से 3 स्लिप्स और 1 से 2 सकर्स ही निकलते हैं। हमारे द्वीपों में अनानास का फलन अप्रैल से जून माह में होता है, लेकिन इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। और जहां तक फल परिरक्षण इकाई का सवाल है, तो इसके लिए तो पूरे वर्ष फलों की लगातार खेप मिलती रहनी चाहिए। एक अनानास का पौधा अपने जीवन काल में एक ही फल पैदा करता है। ये पाया गया है कि उपयुक्त पोषक तत्वों तथा वातावरण की मौजूदगी में 15 से 18 महीने

0: सूखने बाद लगभग 40 से 50% पौधे ही फूल धारण करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, सभी पौधों में फूल लाने के लिए पोषक तत्वों के अलावा पादप वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग भी जरूरी हो जाता है। हमारे इन द्वीपों में पूरे वर्ष भर अनानास का उत्पादन प्राप्त करने के लिए मई से लेकर दिसंबर तक प्रत्येक माह विभिन्न आकार के सकर्स यानी 350 से 500 ग्राम तक के सकर्स लगाकर तथा जब पौधे में 30 से 40 पत्ते आ जाते हैं यानी पौधे लगाने के 12 से 14 महीने बाद 100 ppm इथरल का प्रयोग कर अनानास की फसल हम पूरे वर्ष ले सकते हैं। 100 ppm एथरल 50 मिलीलीटर घोल एक पौधे के ऊपर डालना चाहिए। किसान भाइयों, इस तकनीक को अपनाने से पूरे वर्ष भर अनानास की फसल हमें मिलती रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संपर्क कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से अभी आप सुन रहे थे अग्री टिप्स कार्यक्रम। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज

0: नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Neena Arkel. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities to the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded the India-EU FTA for the benefit of the people. Earlier, the Prime Minister's aircraft was escorted by Swedish Air Force jets as it entered the European country's airspace. He was given a warm welcome at the airport by his Swedish counterpart in a special gesture. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the India-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in India-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. In the fourth leg of his

0: visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third Indian-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the India-Norway Business and Research Summit along with Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in India-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in as Chief Minister of Kerala today. The Chief Minister designated yesterday evening unveiled a 21-member UDF cabinet ahead of today's swearing-in ceremony. Of the 21st ministers, 14, including Satheesan himself, are first-timers. Announcing the cabinet after submitting the list of ministers to Governor Rajendra Arlekar, Mr. Satheesan said the entire UDF ministry will be sworn in together. Congress secured 11 ministerial berths besides the chief minister's post. Mr. Satheesan also announced the Thiruvanchur Radhakrishnan will be the speaker and Shanimol Usman will be the deputy speaker. India has expressed deep concern at the attack targeting the Barakah nuclear facility in the UAE. In a statement, Ministry of External Affairs said such actions are unacceptable and represent a dangerous escalation. New Delhi has urgently called for restraint and a return to dialogue and diplomacy. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has arrived in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly. The six-day event will begin today in Geneva. In a social media post, Mr. Nadda said that his year's theme, Reshaping Global Health, A Shared Responsibility, highlights the importance of collective action in addressing global health challenges. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. Earlier in another match, the Delhi Royal Challengers Bengaluru defeated Punjab Kings by 23 runs in Dharamshala. In today's fixture, Chennai Super Kings and Sunrisers Hyderabad will clash at M.A. Chidambaram Stadium in Chennai at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है सवेरे के 6:10। अब सुनिए जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। प्रशासनिक कारणों के चलते एमवी भारत सीमा के स्थान पर एमवी सेंटिनल 22 मई को रात्रि 9 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा और 25 मई को सुबह 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए लौटेगा और एमवी सेंटिनल के स्थान पर एमवी भारत सीमा 23 मई को रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा करेगा और 24 मई को दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। एमवी भारत सीमा के टिकट धारक यात्री उसी टिकट से एमवी सेंटिनल और एमवी सेंटिनल के टिकट धारक यात्री उसी टिकट से एमवी भारत सीमा की यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार खराब मौसम के कारण जलयान सिंधु कल 19 मई को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी और कचाल होते हुए कैमल बे के लिए अपनी निर्धारित यात्रा के दौरान और 21 मई को सुबह 6 बजे कैमल बे से इन्हीं मार्गों से वापसी यात्रा के दौरान कचाल बंदरगाह पर नहीं रुकेगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार जलयान सिंधु 19 मई को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैमल बे के लिए रवाना होगा और 21 मई को सुबह 8 बजे कैमल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। कचाल द्वीप जाने वाले यात्रियों के लिए कमोटा द्वीप पर स्थित एमवी लॉन्ग आइलैंड के माध्यम से कमोटा द्वीप से कचाल तक आवश्यक संपर्क उपलब्ध होगा। मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी परसों 20 मई को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से यात्रा करेगा और अगले दिन 21 मई को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। एमवी भारत सीमा कल 19 मई को सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा। जलयान श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही रात्रि 9 बजे लिटिल

0: नमान से श्रीविजयपुरम के लिए रवाना होगा। और अब आज होने वाली यात्राएं। एमबी स्ट्रेट आइलैंड आज दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप की यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप के लिए इस जलियान की वापसी होगी। स्वराज द्वीप से सीधे आज ही दोपहर बाद 2:30 पर। आज दिन के 11:30 पर एमवी बाराटांग की यात्रा होगी स्वराज द्वीप के लिए। जलियान श्रीविजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 3:30 पर। एमवी रानीचंगा आज दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा करेगा। जलियान श्रीविजयपुरम से चलेगा और आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी आज शाम 5 बजे स्वराज द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। जलियान श्रीविजयपुरम से छूटेगा और कल सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम पहुँचेगा। और अब सुनिए कल होने वाली कुछ यात्राओं की सूचना। एमवी नॉर्थ पैसेज कल सवेरे छः बजे श्रीविजयपुरम से लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत के लिए चलेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्रीविजयपुरम पहुंचेगा। एमवी कमोटा कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा करेगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी बम्बुका कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम की वापसी करेगा। और एमवी रानीचंगा कल दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और कल दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए जलियान की वापसी होगी कल ही दोपहर बाद 2:30 पर। ये था जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी श्रीविजयपुरम है। समय सवेरे के 6:15। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष।

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और आज कार्यक्रम का शीर्षक है चांद। दोस्तों, चांद आसमान का सबसे सुंदर तारा है जो रात की चादर में मुस्काए, इसकी ठंडी ठंडी किरणें दिल को छू जाए और ऐसा लगे मानो जैसे सपनों की दुनिया हमें पास बुलाए।

दोस्तों, वैसे तो चांद हर किसी की तन्हाई का साथी होता है, खासकर जब प्यार मोहब्बत की बातें होती है तो प्रेमी अपनी प्रेमिका की तुलना चांद से ही करने लगता है।

दोस्तों, चांद नीले नीले अंबर पर धीरे से चलता, तारों संग बातें करता और अपनी चांदनी की रोशनी से हम सबके जीवन में एक नई उम्मीद जगाता।

अभी आप सुन रहे थे चांद शीर्षक पर केंद्रित इंद्रधनुष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रही थी तेरेसा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। सुनते हैं रामचरितमानस गान की 242वीं कड़ी।

सीता के पांव से रक्त बहता देख श्री राम ने धनुष पर सरकंडे का बाण चढ़ा दुष्ट कौवे के पीछे छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित बाण कौवे का पीछा करने लगा। भयभीत हो जयंत अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र की शरण में पहुंचा, पर इंद्र ने रामद्रोही जान उसे शरण नहीं दी। प्राण बचाने के लिए जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक आदि में भागते भागते थक गया, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। जयंत की दशा देख देवर्षि नारद को दया आई और उन्होंने उसे श्री राम की ही शरण जाने को कहा। जयंत को तब तक प्रभु की शक्ति का पूरा आभास मिल चुका था। उनसे उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। पार्वती को प्रभु महिमा की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे दयालु हैं प्रभु कि प्राणों की भिक्षा मांगते कौवे की आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। चित्रकूट में निवास करते हुए कुछ काल बीत जाने पर एक दिन श्रीराम के मन में ये विचार आया कि बहुत लोगों को उनके निवास स्थान की सूचना मिल चुकी है, फलस्वरूप उनके दर्शनों को आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अतः अपने वन प्रवास को अज्ञात रखने के लिए किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए। समय उपयुक्त जान वहां के निवासी मुनिगण आदि से विदा लेकर श्रीराम अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता को लेकर गहन वन की ओर अग्रसर हुए। राह में ऋषि अत्रि का आश्रम पड़ता था। श्री राम के आगमन का समाचार पाकर ऋषिवर उनकी अगवानी के लिए दौड़ते हुए आए।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की 242वीं कड़ी। स्वर दिया था रविंद्र साठे ने और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए थुत्थुकुड़ी भारत में भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के लिए ऐतिहासिक समझौता पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक हैं चित्रकांत शर्मा।
1: भारत के समुद्री क्षेत्र में 20 अप्रैल 2026 का दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज किया गया है, जब तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता न केवल औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भारत के समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक निर्णायक पहल भी माना जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से भारत को वैश्विक जहाज निर्माण मानचित्र पर एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी स्थिति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे देश आने वाले दशकों में समुद्री शक्ति के रूप में उभर सके। यह ऐतिहासिक समझौता भारत सरकार के अधीन प्रमुख बंदरगाह VO चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी और तमिलनाडु सरकार के उपक्रम स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु के संयुक्त विशेष प्रायोजन वाहन नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज तमिलनाडु लिमिटेड के बीच हुआ है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया गणराज्य की प्रमुख कंपनी HDKSOE की भागीदारी ने इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान किया है। यह समझौता दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की भारत यात्रा के दौरान संपन्न हुआ, जिसमें भारत के बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति ने इस अवसर की गंभीरता और रणनीतिक महत्व को और अधिक बढ़ा दिया। यह परियोजना भारत और दक्षिण कोरिया के बीच समुद्री क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का परिणाम है, जिसे एक व्यापक ढांचे के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इस ढांचे को वॉयजेस नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य जहाज निर्माण, जहाज रानी और समुद्री लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच दक्षता, नवाचार और पैमाने पर आधारित साझेदारी को मजबूत करना है। थूथुकुड़ी में प्रस्तावित यह मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड भारत का पहला ऐसा विशाल जहाज निर्माण केंद्र होगा, जिसकी वार्षिक क्षमता 2.5 मिलियन ग्रॉस टन होगी। यह सुविधा न केवल जहाज निर्माण के लिए अत्याधुनिक ढांचे के रूप में विकसित की जाएगी, बल्कि इसे थूथुकुड़ी शिप बिल्डिंग क्लस्टर की केंद्रीय इकाई के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। परियोजना के लिए तकनीकी, आर्थिक, व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले ही पूरी हो चुकी है, जबकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

0: तैयार करने का कार्य जारी है। इसके साथ ही इस क्लस्टर को राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन से सैद्धांतिक सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर लगभग 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है, जबकि इसके प्रभाव से तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे। यह केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक समुद्री औद्योगिक इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एक कदम है, जिसमें सहायक उद्योगों, घटक निर्माण इकाइयों, समुद्री उपकरणों और इंजीनियरिंग आपूर्ति श्रृंखलाओं का व्यापक विकास शामिल है। भारत सरकार का समुद्री अमृतकाल विजन 2047 देश को वर्ष 2047 तक विश्व के शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखता है। इसके तहत भारत का उद्देश्य वार्षिक 4.5 मिलियन ग्रॉस टन जहाज निर्माण क्षमता प्राप्त करना है। यह परियोजना न केवल उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि भारत के समुद्री क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी प्रोत्साहित करेगी। पिछले वर्ष सितंबर में भारत सरकार द्वारा लगभग 70,000 करोड़ रुपए के व्यापक जहाज निर्माण नीति पैकेज की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी जहाज निर्माण केंद्र बनाना है। इस नीति के लागू होने के बाद भारतीय शिपयार्ड में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती रुचि देखी गई है। उदाहरण के तौर पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में CMA CGM द्वारा 6,700 TEU जहाजों के ऑर्डर दिए गए हैं, जबकि पिपावाव शिपयार्ड को नॉर्वे से 6 रासायनिक टैंकर और ब्रिटेन से 4 अमोनिया संचालित बल्क कैरियर के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर इसे भारत की समुद्री यात्रा में एक निर्णायक मोड़ बताया और कहा कि यह साझेदारी देश को विश्व स्तरीय तकनीक नवाचार और क्षमता प्रदान करेगी। थुथुकुड़ी में प्रस्तावित यह मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड भारत के समुद्री इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह केवल एक औद्योगिक ढांचा नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक दिशा का आधार स्तंभ है।
1: तूतुकुड़ी में भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के लिए ऐतिहासिक समझौता पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। 6:45 हुए हैं। सुनते हैं वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देश गान।

अभी आप संवेद स्वरों में वतन के गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। समय हुआ है सवेरे के 6:50। अब एक नज़र डालते हैं आज के मौसम के मिजाज पर। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मछुआरों को अगले 7 दिनों तक के मौसम संबंधी चेतावनी में बताया गया है कि खराब मौसम के कारण हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। इसलिए मछुआरों को 20 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक भागों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था आज का मौसम का मिजाज। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के इस सभा और सांधे सभा के कार्यक्रमों का विवरण। आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुना जा सकता है गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत विशेष कार्यक्रम रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी। सुगम संगीत के तहत 8:30 पर सुनेगा ताहिरा सईद और फरीदा खानम को। तरानी सुहानी कार्यक्रम होगा सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद साबरी खान का सारंगी और पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। सुबह 10:00 होगा कार्यक्रम गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनवाई जाएगी दिन के 11:00। एक ही कलाकार इस कार्यक्रम में 11:30 पर सुनेगा पंकज उदास के गाए कुछ गीत। दोपहर 12:00 हम प्रसारित करेंगे तेलुगु कार्यक्रम, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय एड्स टीकाकरण दिवस पर चर्चाओं के अलावा कार्यक्रम गान लहरी। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30, जिसमें आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। 1:10 पर समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम और 1:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी, जिसमें पहले आप सुनेंगे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। प्राइमरी चैनल पर हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें होंगी सूचनाएं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर चर्चा और चुकचुका गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत। सुगम संगीत के तहत 4:30 पर फनकार होंगे ए हरिहरन और नीना मेहता। हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा आप सुनेंगे 4:40 पर और 4:45 पर होगा कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी की 90 वर्षों की कहानी पर चर्चा और फास्ट बीट सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम थुल्लुम इसई अरुवी। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर उपनिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अभिजीत रॉय से की गई साक्षात्कार आप सुन पाएंगे बंगला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर। संध्या 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में सुना जा सकता है प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान की 6 कड़ी के तहत वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दामदे कुलदीप नामदयो से की गई।

बातचीत, पशु प्रजनन में पोषण और प्रबंधन की भूमिका। पॉप मसाला कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा संध्या 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी के तहत हम प्रसारित करेंगे पुराने फिल्में गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर चर्चा। चित्रपट संगीत कार्यक्रम होगा रात्रि 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार के बाद आप सुनेंगे कुछ गौरवगान। रात्रि 10:00 होगा कार्यक्रम संदेश आते हैं और इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चन्द शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्रीमोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमन्त्री श्रीमोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी सह प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तान्तर्गतम् उभौ नेतारौ भारत स्वीडन सम्बन्धानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम् अन्तरिक्ष रक्षा अनुसन्धानं समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय सम्बोधने श्रीमोदी आतंकवादम् आलोचयन् नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्।

0: कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथ ग्रहणम अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रन्थियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटिमितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटिमितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तम्भौ इति वर्णितवान्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। समय सवेरे के 7 बजे हैं। जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 19.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। आज सवेरे 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता रही 81% और न्यूनतम तापमान रहा 24.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 28.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय हुआ सवेरे 4:55 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:36। अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार हवाई उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिन के 11:40 पर दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार हवाई उड़ान संबंधी जानकारी। अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। आज सवेरे 7:30 पर प्राइमरी चैनल और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत विशेष कार्यक्रम रेडियो रागनी 90 वर्षों की कहानी।

एक ही कलाकार कार्यक्रम के तहत 11:30 पर सुनेगा पंकज उदास के गाए कुछ गीत। दोपहर 1:30 पर होगा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर उपनिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अभिजीत रॉय से की गई साक्षात्कार आप सुन पाएंगे बंगला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर। संध्या 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में सुना जा सकता है प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान की 6 कड़ी के तहत वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दामदे कुलदेव नाम

0: पॉप मसाला कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा संध्या 6:30 पर। सात बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। इसके साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। श्रोताओं, कुछ ही पलों में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

सांसद विष्णुपद रे ने मुख्य सचिव से ब्रुक्शाबाद और अस्टिनाबाद क्षेत्र के निवासियों को बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया है। उद्योग निदेशालय की ओर से एक वर्षीय पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन मांगे गए हैं। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एनिम्स की ओर से विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया और द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे ने प्रशासन के मुख्य सचिव से पत्र लिखकर वृक्षाबाद और अस्टिनाबाद क्षेत्र के निवासियों को सड़क, पीने का पानी और बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरतें तत्काल उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया है। सांसद ने मुख्य सचिव से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर संबंधित विभागों को इन मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक प्रभावित निवासियों को पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाए, ताकि जनहित में तत्काल और सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रेस क्रॉस से सम्मानित किए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये राष्ट्रीय गौरव का क्षण है कि प्रधानमंत्री को दिया गया 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान श्री मोदी के प्रति वैश्विक प्रशंसा और नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। उद्योग निदेशालय की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए एक वर्षीय पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें सिलाई और वस्त्र निर्माण, बेंत और बांस हस्तशिल्प, बढ़ईगिरी और सामान्य इंजीनियरिंग जैसे विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। डिगलीपुर केंद्र सिलाई और वस्त्र निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और बढ़ईगिरी में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। लिटिल अंडमान में सामान्य इंजीनियरिंग और बढ़ईगिरी में प्रशिक्षण उपलब्ध होगा, जबकि कार निकोबार में सिलाई और वस्त्र निर्माण, बढ़ईगिरी, जूट और जूट उत्पाद तथा सामान्य इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनकी आयु 15 से 45 वर्ष के बीच हो तथा द्वीप समूह का स्थानीय प्रमाण पत्र धारक हो, वे इसके लिए पात्र होंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को ₹1,000 का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। प्रवेश के लिए फॉर्म जारी करने की प्रक्रिया कल से प्रशिक्षण प्रकोष्ठ उद्योग निदेशालय और विभाग के विस्तार कार्यालयों में शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 जून है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक संबंधित उद्योग संवर्धन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय अभियान को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है, जिसका

उद्देश्य संवेदनशील आबादी वाले क्षेत्रों में चेस्ट एक्सरे और तत्काल जांच के माध्यम से सक्रिय स्क्रीनिंग कर टीबी के सभी छूटे हुए मामलों की जल्द पहचान करना, व्यक्तिगत रोगी देखभाल, पोषण संबंधी सहायता और नियमित उपचार के माध्यम से टीबी से संबंधित मौतों में कमी लाना है। विभाग ने टीबी से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आम जनता से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराएं। इस दिशा में दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से रील प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इच्छुक प्रतिभागी टीबी का शीघ्र निदान, उपचार, समय पर जांच, इलाज का महत्व, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी, खांसते या छींकते समय बरती जाने वाली सावधानियां, टीबी से जुड़े भ्रम और सामाजिक भेदभाव को दूर करना, निक्षय मित्र सहायता जैसे विषयों पर रील बना सकते हैं जो 30 मई तक जमा किए जा सकते हैं। विजेताओं को नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है कार्यशाला और मौसम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एनिम्स ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। एनिम्स के निदेशक डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के तहत छात्रों को रिसर्च प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए एक विशेष कार्यशाला और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया ताकि उन्हें एक प्रतिस्पर्धी ICMR शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप रिसर्च प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य अंडर ग्रेजुएट स्तर के ही रिसर्च उन्मुख संस्कृति को बढ़ावा देना और क्षमता निर्माण केंद्र के रूप में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की लगातार भूमिका को और मजबूत करना है। द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर होने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 21 मई तक समुद्र में ना जाएं। श्री विजयपुरम बंदरगाह पर खतरे का संकेत नंबर 3 लगा दिया गया है। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से मरीना पार्क स्थित जल क्रीड़ा परिसर में अबरडीन युद्ध स्मारक पर ग्रेट अंडमानी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जो 17 मई 1859 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों और ग्रेट अंडमानी लोगों के बीच लड़े गए युद्ध में शहीद हुए थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, ग्रेट अंडमानी समुदाय के सदस्यों और आम जनता द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। द्वीप समूह ने समावेशी शिक्षा और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के प्रशिक्षकों के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए मॉडल और शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रदर्शनी पर आधारित एक ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए समग्र शिक्षा केंद्र की निदेशक सुमिता मोल एस ने किया। उन्होंने समावेशी शिक्षा में नवीन शिक्षण विधियों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में अभिभावकों और दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। प्रदर्शनी के दौरान प्रशिक्षु शिक्षकों ने दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, वैचारिक अधिगम और दैनिक जीवन कौशल के क्षेत्र में इन मॉडलों और शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता को विस्तार से समझाया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुबंध के आधार पर सागर मित्र की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र प्रशासन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मई है। अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। चिंते फायरिंग रेंज में सेना द्वारा छोटे हथियारों से फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। ये अभ्यास 21 मई को सुबह 9:30 बजे, दोपहर 1 बजे, 2 बजे, शाम 5 बजे, 5:30 बजे और 7:30 बजे तक होगा। आम जनता से इस दौरान फायरिंग रेंज से खुद को और अपने पशुओं को दूर रखने की

0: सलाह दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सांसद विष्णुपद रे ने मुख्य सचिव से वृक्षाबाद और असरीनाबाद क्षेत्र के निवासियों को बुनियादी ज़रूरतें उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया है। उद्योग निदेशालय की ओर से एक वर्षीय पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन मांगे गए हैं। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एनिम्स की ओर से विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया और द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम देश रागनी।

श्रोताओं, हमारा भारत रंगों का देश है। इसकी मिट्टी संस्कृतियों की खुशबू से महकती है। यहाँ हर कदम पर भाषा बदलती है, हर मोड़ पर परंपरा मुस्कुराती है, फिर भी सबके दिलों में एक ही नाम बसता है, भारत। कहीं मंदिरों में बजती घंटियों की आवाज़ें, तो कहीं मस्जिदों से आती अजानों की सदाएं, कहीं गुरुद्वारे की सेवा, तो कहीं गिरजाघरों से आती प्रार्थनाओं की आवाज़ें। वेशभूषा अलग, खान पान अलग और भाषाएं अनगिनत, फिर भी हर एक का दिल एक। इन सारी विभिन्नताओं और अनेकताओं में एकता का स्वरूप है हमारा भारत।

श्रोताओं, हम सब एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी एक हैं, क्योंकि ये फ़र्क केवल बाहर का है। अंदर तो हम सब में एक ही जज्बा है, अपने देश अपने वतन से प्यार का। जब कश्मीर की ठंडी हवाएं केरल के समंदर से मिलती है, जब गुजरात का गरबा और असम का बिहू एक ही मंच पर थिरकते हैं, तब बनता है भारत, जहां हर रंग मिलकर इंद्रधनुष बन जाता है, क्योंकि ये रंगों की धरती है।

भारत में त्यौहार भी सबके अपने अपने हैं, पर खुशियां सबकी एक होती हैं। दिवाली की रोशनी हो या फिर दर्द की ईद की मिठास, हर घर में बसती है मोहब्बत की बात। ये अनेकता हमें अलग नहीं बल्कि एकजुट करती है, इसलिए अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं। तो आइए इस

श्रोताओं, तो आइए इस अनमोल विरासत को संजोए रखें, इस एकता के दीप को जलाए रखें, क्योंकि यही है हमारी पहचान, अनेकता में एकता, भारत की शान। मिलते हैं कल सवेरे 7:15 पर। जय हिंद, जय भारत।

श्रोताओं, तो आइए इस अनमोल विरासत को संजोए रखें, इस एकता के दीप को जलाए रखें, क्योंकि यही है हमारी पहचान, अनेकता में एकता, भारत की शान। मिलते हैं कल सवेरे 7:15 पर। जय हिंद, जय भारत।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। पेश है गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत कार्यक्रम रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी।
1: रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी।

0: नमस्कार, आवाज की इस दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां शब्दों का जादू दिल की गहराई से महसूस होती है। रेडियो रागनी 90 वर्षों की कहानी, एक ऐसा सफर जहां थी दादी नानी की कहानियां, देशभक्ति की पुकार और खेत खलियानों तक पहुंचती मौसम की खबर। रेडियो केवल एक यंत्र नहीं, यह पीढ़ियों की धड़कन है। जी हाँ, आज मोबाइल है, इंटरनेट है और हजारों स्क्रीन भी, लेकिन एक ऐसा समय था जब पूरे घर का दिल एक छोटे से रेडियो में धड़कता था। 90 वर्षों का यह सफर सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि भावनाओं का सफर है, और अपनी भावनाओं के साथ हमसे जुड़े मोहम्मद कौसर अली, जिन्होंने एक समय में कैजुअल अनाउंसर के रूप में आकाशवाणी को अपनी सेवा दी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कौसर अली। इस समय मैं बिहार में हूँ, लेकिन हर समय आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ। आज आकाशवाणी ने 90 वर्षों की गौरवशाली सफर पूरे किए हैं, और मेरे लिए तो गर्व की बात है कि इस संस्था से हमें जुड़ने का मौका मिला। मैं एक उद्घोषक के रूप में आकाशवाणी में कार्य कर चुका हूँ, जहां से मुझे अनुशासन, समय की पाबंदी और जिम्मेदारी का महत्व समझने का अवसर मिला। आज भी हमारे तन मन में, या यूं कहें कि रग रग में, आकाशवाणी बसी हुई है। दोस्तों, आज भी अनेक गांवों और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट और टीवी की सुविधा सीमित है, परंतु आकाशवाणी वहां हमेशा से लोगों तक खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार संबंधी जानकारी पहुंचाती रही है। आज के इस डिजिटल युग में भी आकाशवाणी का महत्व कम नहीं हुआ है। जैसे जैसे तकनीक ने विकास किया, रेडियो ने भी अपने आप को विकसित किया है। आज आकाशवाणी FM चैनलों, मोबाइल ऐप और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। आकाशवाणी आज भी समाचारों का एक भरोसेमंद स्रोत है। प्राकृतिक आपदाएं हो, मौसम की चेतावनी हो या सरकारी घोषणाएं, सभी की सही और सटीक जानकारी लोगों तक जल्दी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, भाषा सीखने के कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता अभियान, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, कवि सम्मेलन, नाटकों के प्रसारण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। दोस्तों, आज की नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़े रखने का कार्य कोई करता है तो वह है आकाशवाणी। इन 90 वर्षों में आकाश

0: स्वामी ने आज भी अपनी विश्वसनीयता को कायम रखा है। इसकी 90 वर्षों की यात्रा भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास की कहानी है। इसने देशवासियों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। आने वाले समय में भी आकाशवाणी भारतीय समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत की संस्कृति की सुननी हो सच्ची कहानी तो सुनिए आकाशवाणी की जुबानी। जय हिंद।
1: जी हाँ, रेडियो ने शहरों के साथ साथ गांव के जीवन को रोशन किया। खेतों की जानकारी, मौसम का हाल, सरकारी योजनाएं और लोकगीतों की मिठास देकर हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई और यह असली सामाजिक जुड़ाव का भी साक्षी बनी। क्योंकि गांव की चौपाल हो या शहर की बालकनी, रेडियो ने हर जगह अपनी सरलता और सुलभता का प्रमाण दिया। खबरें, संगीत और लोगों को जोड़ने वाली आवाज ने धीरे धीरे हर घर की पहचान के रूप में अपने आप को स्थापित किया। आज भी लोग सिर्फ इसे सुनकर मुस्कुराते हैं, आवाजों को महसूस करते हैं, क्योंकि इससे निकलती आवाज में अपनापन झलकता है।

0: इसकी सरलता और सुलभता के बारे में कुछ इस तरह अपने विचार साझा कर रही हैं डॉक्टर एन लक्ष्मी।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर एन लक्ष्मी हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं पिछले 15 वर्षों से आकाशवाणी श्री विजयपुरम से जुड़ी हुई हूँ। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाले विविध कार्यक्रमों में

0: योगदान देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यह वाक्य केवल कवि के लिए ही नहीं बल्कि आकाशवाणी के लिए भी ठीक बैठता है, क्योंकि आकाशवाणी के कार्यक्रम ऐसे द्वीपों पर भी प्रसारित होता है जहां कोई दूसरे साधन शायद पहुंच न सके। इसके माध्यम से द्वीपवासियों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान किया जाता है। प्रादेशिक समाचार, कृषि कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी लाइव फोन इन कार्यक्रम आदि का प्रसारण द्वीपवासियों के लिए लाभदायक है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय और स्थानीय संस्कृति संबंधी कार्यक्रम भी प्रसारित होते रहते हैं। स्थानीय संगीत, नाटक आदि का भी निरंतर प्रसारण होते रहता है। कोरोना काल में भी आकाशवाणी ने लाजवाब कार्य किया है। सप्ताह में एक बार अन्य भाषाओं के कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, निकोबारी आदि भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। त्वरित सूचना जैसे जहाज संबंधी जानकारी दूर दूर के द्वीपों में रहने वाले द्वीपवासियों तक आकाशवाणी ही पहुंचाता है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम के द्वारा प्रसारित कई कार्यक्रमों में एक प्रमुख कार्यक्रम है हिंदी भाषा पाठ, जिसमें दो छात्रों और एक गुरु के बीच में एक वार्तालाप के रूप में हिंदी भाषा को सिखाया जाता है। इसमें कुल चार अंकों में मैंने अपना योगदान दिया है, जो कि प्रति मंगलवार को प्रसारित होता था। यह बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा है और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में आकाशवाणी श्री विजयपुरम द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम पुनः प्रसारित हों। इसके अतिरिक्त कई वार्ताओं में और कवि गोष्ठियों में, सामूहिक चर्चाओं में प्रतिभागिता करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम के प्रति धन्यवाद देती हूँ। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में कार्य करने वाले कर्मचारियों की भी सहृदयता की मैं सराहना करती। मुझे आशा और विश्वास है कि आकाशवाणी श्री विजयपुरम निरंतर इसी प्रकार द्वीपवासियों को अपने कार्यक्रमों के द्वारा मार्गदर्शन करता रहेगा। बढ़े चलो आकाशवाणी, तुम बढ़े चलो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आकाशवाणी श्री विजयपुरम को अभिनंदन देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: जी हाँ, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, रेडियो के लिए भी ये वाक्य एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि रेडियो ने दिलों को जोड़ा, देश को जोड़ा और उम्मीदों को जिंदा रखा। इसने जहाँ कुछ लोगों को गीत संगीत दिया तो वहीं कुछ लोगों को यादें दी, कुछ लोगों को अपनापन दिया तो कुछ लोगों को दोस्त,

0: जिंदगी के उतार चढ़ाव में हर पड़ाव पर एक सच्चा साथी सा साथ निभाता इस यंत्र ने आज चलते चलते 90 वर्षों का एक लंबा सफर तय किया है। इसी सफर की यादों को साझा करते हुए रंगमंच से जुड़े कवि एवं चित्रकार बासु कुमार जी।
1: नमस्कार मित्रों, मैं बासु कुमार, कवि, चित्रकार और रंगकर्मी, आकाशवाणी से जुड़ी अपनी कुछ यादों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहले तो मैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम परिवार के सभी साथियों को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आकाशवाणी से मेरा संबंध बना 1985 में। तब मैं JNRM कॉलेज में BA सेकंड ईयर का छात्र था। कविताएं लिखने का शौक पहले से ही थी, पर रेडियो में पढ़ने का अवसर मुझे श्रद्धेय सेवाराम सेत्या सर के कारण ही मिला। तब आकाशवाणी में युवाओं के लिए पंगुड़ी नाम से कार्यक्रम हुआ करता था, जिसके संयोजक सेत्या सर थे। पहली कविता थी जो मैं उस कार्यक्रम के लिए पढ़ा, वो थी लवर्स पॉइंट नाम की कविता। ये था रेडियो से मेरा पहला परिचय। रेडियो के लिए मैंने बहुत सारे नाटक, कविताएं, रूपक और कहानियां भी लिखी है। बी हाई ग्रेड का मैं आर्टिस्ट भी रहा हूँ। काफी साल हो गए मुझे नाटक करते हुए यहाँ आकाशवाणी में, बहुत पुरानी बात हो गई है अब तो। लेकिन जब उस समय राज भैया जो थे, वो JS राज, जो नाटक के सेक्शन देखा करते थे, नाटक करवाया करते थे, तो उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारे नाटक किए, कुछ नाटक। और वो नाटक हुआ करता था आकाशवाणी के, हम लोग शाम को जो है वहाँ पहुँचते थे। यहाँ पहले ये बिल्डिंग जो थी, जो अभी नई बनी है, वो नहीं थी, पुरानी बिल्डिंग थी, पुरानी लकड़ी की बिल्डिंग थी। वहीं पे हम लोग रिहर्सल भी करते थे, और रिहर्सल

0: दरअसल हम रिहर्सल स्टूडियो में नहीं करते थे, हम रिहर्सल बाहर करते थे। यहाँ इस पुरानी जो लकड़ी की बिल्डिंग है, इसके पीछे ही एक पानी की टंकी है, वहीं पे एक कैंटीन चला करता था, जहाँ गरम गरम समोसे और चाय हम लोग पी कर वहाँ पे रिहर्सल किया करते थे शाम के टाइम में। और जब कुछ अच्छा हो जाता तो तब हम लोग फिर रिकॉर्डिंग करते थे आकाश रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर। इस तरह से वो एक माहौल ऐसा था जिसमें आज वैसे माहौल वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, कि कितने मतलब हम लोग हंसते मजाक करते और बहुत मतलब एक अलग ही एक माहौल था। नाटकों में मेरे बहुत सारे साथी कलाकार थे, मसलन श्रद्धा राम जी, पूर्णिमा आचार्य जी, डॉक्टर शीता इकबाल, अनीश अहमद जी, राम प्रसाद निर्दोष जी, कुछ के नाम तो मैं भूल रहा हूँ। हाँ, नाटकों के क्षेत्र में बहुत ही वरिष्ठ कलाकार श्री सजूलाल जी के साथ भी हमने रेडियो नाटक में काम किया। इन लोगों के साथ काम करने का एक अलग ही अनुभव रहा है। ग्रामीण जगत से भी जुड़ा रहा, उसके लिए हम लोग गाँव गाँव जाते थे रिकॉर्डर लेकर, लोगों के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में हम रिकॉर्ड करते थे, बातचीत करते थे और उसका प्रसारित यहाँ करवाते थे।
1: मैं इतना कहूंगा कि आकाशवाणी देश के सबसे ज्यादा विश्वसनीय माध्यमों से एक है, जिसकी बराबरी मुझे नहीं लगता कोई और माध्यम कर सकता है। और आज भी गांव-गांव में भले ही टीवी पहुंच गया हो या मोबाइल पहुंच गया हो, लेकिन रेडियो का एक अपना ही एक अलग लोगों का एक विश्वास रेडियो पर बना रहा। जब मैं आकाशवाणी से जुड़ा तब ये मोबाइल टीवी ये सब कुछ नहीं था। हाँ, ये बहुत बाद में जाकर आया, और रेडियो ही एक ऐसा सशक्त माध्यम था जो लोगों को मुख्य धारा से जोड़े रखता था। देश विदेश की खबरें या सरकारी योजना के बारे में रेडियो के द्वारा ही घर घर सबसे पहले पहुंचता था। यही नहीं, अभी कोई संकट आ गया है या बाढ़ आ गई या आपदा आ गई है, तो उस समय भी इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क जब ठप हो जाता था तब रेडियो ही एकमात्र साधन था जो लोगों को बचाता था या बचा सकता है। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि कई लोग अकेले होते हैं तो उनका एकमात्र साधन रेडियो ही होता है जो उनके अकेलेपन के एहसास को मिटाता है। सही माने में रेडियो हमारी संस्कृति, शिक्षा और दैनिक जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है।
2: वासु कुमार जी के शब्दों से हमें ये पता चला कि रेडियो ने कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को मंच प्रदान करने के साथ साथ अकेलेपन को भी दूर किया। समय बदला, टीवी आया, मोबाइल आए, इंटरनेट की सुविधा आम हो गई, लेकिन रेडियो आज भी वही है, उसी गर्मजोशी के साथ, उसी अपनेपन के साथ।

0: रेडियो वो दोस्त है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल साथ रहता है। जब कोई नहीं सुनता तब भी रेडियो सुनता और सुनाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो आज एफएम की मस्ती है, आरजे की चुलबुली बातें हैं, छोटे छोटे पॉडकास्ट भी हैं और ऑनलाइन रेडियो भी, लेकिन असली जादू तो अब भी आवाज़ का ही है। दिल को छू लेने वाली और दिल तक पहुंचने वाली आवाज़। 90 वर्षों का ये सफ़र हमें यही सिखाता है कि तकनीक बदल सकती है, माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन दिल से निकली आवाज़ का जादू हमेशा यूं ही रहेगा, अपनेपन के साथ और नएपन के साथ। अब चाहेंगे कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।
1: रेडियो रागिनी, 90 वर्षों की कहानी।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान

0: महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजय जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में

0: श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
2: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो

0: पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
3: Central to the visit was the adoption of a joint action plan, which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions 21st century. Both nations launched a joint innovation partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center, focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, Sweden-India Technology and AI Corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for industrial transition, significantly expanding cooperation in green steel and low-carbon industrial transformation. Defense and security cooperation have transitioned from a traditional buyer-seller model to a long-term industrial partnership, with Swedish companies actively investing in India's defense production corridors. Prime Minister specifically thanks Sweden.

फरीदा खानम और ताहिरा सईद को सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। सुनते हैं तराने सुहाने कार्यक्रम।

0: ये थी कार्यक्रम की पहली सौगात घर फिल्म से। गुलजार के लिखे गीत को धुनों में पिरोया था राहुल देव बर्मन ने। गायिका थी लता मंगेशकर। अगला गीत रूना लैला और भूपेंद्र की आवाजों में सुनवा रहे हैं घरौंदा फिल्म से।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

गोलमाल फिल्म का गीत किशोर कुमार और अमित कुमार की आवाज़ों में, गीत लिखा है गुलजार और संगीत दिया है राहुल देवबर्मन ने।

0: सम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ ताल कहाँ सम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ तेरे कर तुम नान कर तुम तेरे कर तुम नान कर तुम हम तुम नदाफात हिपाता लताफात पताफात मेरा कस करामत
1: ताते देता हम ताते देता हम थैया थैया थै टकटा दुम टकटन्या
0: सपने में देखा सपना ओ सपने में देखा सपना।
2: जावेद अख्तर के गीत और शिवहरी के संगीत में सिलसिला फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: और अब लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के उस पार सुनेगा खयाम के संगीत निर्देशन में साहिर के लिखे बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फिल्म का नाम कभी कभी।
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं और माइलेज भी बढ़िया है। 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 45,000।
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
3: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विस कल कैंसर की जांच के लिए आई।
4: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
3: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
4: मैं 14 साल की हूँ।
3: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
4: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
3: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
4: धन्यवाद दीदी।
3: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
5: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC applies.

मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, बोल हैं मजरू के और धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने, और ये इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, सवेरे 10 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गाता चल का। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उस्ताद साबरी खान का सारंगी और पंडित शिव कुमार शर्मा का हिंदुस्तानी शैली में संतूर वादन। तो आइए पहले सुनते हैं उस्ताद साबरी खान का सारंगी वादन। इनके साथ तबले पर रशीद मुस्तफा थिरकवा, स्वर मंडल पर कमला साबरी और तानपुरे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, सवेरे 10 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गाता चल का। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उस्ताद साबरी खान का सारंगी और पंडित शिव कुमार शर्मा का हिंदुस्तानी शैली में संतूर वादन। तो आइए पहले सुनते हैं उस्ताद साबरी खान का सारंगी वादन। इनके साथ तबले पर रशीद मुस्तफा थिरकवा, स्वर मंडल पर कमला साबरी और तानपुरे पर गुलाम साबरी ने संगति की है। तो लीजिए, प्रस्तुत है उस्ताद साबरी खान का सारंगी पर बजाया राग पूरिया कल्याण। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

उस्ताद साबरी खान का सारंगी पर बजाया राग पूरिया कल्याण सुनने के बाद और अब कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग कलावती। इनके साथ तबले पर हैं शफात अहमद खान।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद साबरी खान का सारंगी और पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से लिया था। स्वर दिया था सुखविंदर सिंह और साथियों ने, बोल जयदीप साहनी के थे, वधुन बनाई थी सलीम सुलेमान ने। अब आपको सुनवाते हैं न्यूयॉर्क फिल्म का गाना मोहित चौहान की आवाज में। गीतकार संदीप श्रीवास्तव व संगीतकार हैं प्रीतम।

जावेद अख्तर का लिखा एवं संजीव कोहली का संगीतबद्ध किया हुआ, ये सुनते हैं वीर जारा फिल्म का गाना। स्वर दिया है लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर ने।

के और शिल्पा राव की आवाज़ों में आइए सुनते हैं बचना ए हसीनो फिल्म का गाना। बोल अनविता दत्त गुप्तान के हैं व धुन बनाई है विशाल और शेखर ने।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में तैयार ये था फनाह फिल्म का गाना। शब्दकार प्रसून जोशी व आवाजें थीं शान और कैलाश खैर की। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लफंगे परिंदे फिल्म से, स्वर दिया है मोहित चौहान ने, जिसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने व संगीत से सजाया है आनंद ने।

अनुष्का मनचंदा और सलीम मर्चेंट की आवाज़ों में ये था अलीशा फिल्म का गाना। बोल अन्विता दत्त गुप्तान के थे व धुन तैयार की थी सलीम सुलेमान ने। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आइए सुनते हैं दिल बोले हड़िप्पा फिल्म का गाना। गीतकार जयदीप साहनी व संगीतकार हैं प्रीतम।

विशाल और शेखर के संगीत निर्देशन में तैयार ये था टशन फिल्म का गाना। शब्दकार कौसर मुनीर व आवाजें थीं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की। अब आपको सुनवाते हैं तारा रमपम फिल्म का गाना। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में बोल जावेद अख्तर के हैं व धुन तैयार की है विशाल और शेखर ने।

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में तैयार अभी आपने झूम बराबर झूम फिल्म का ये गीत सुना। शब्दकार गुलजार व आवाज़ें थी राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1286वीं कड़ी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
0: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
0: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
0: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
0: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
0: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
0: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
0: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
0: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
0: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
0: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
0: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे, विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमलेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
3: हेलो।

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
2: I have seen rainbow.
3: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
4: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical coordinator, Bati Langlingdo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
5: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
8: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
9: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
10: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
11: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
12: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
11: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
13: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: दानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।

उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल में

0: बिल्कुल होता है,
1: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
0: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
1: है ना
0: जी।
1: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
0: तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
3: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है, और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
4: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
5: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
1: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
5: अच्छा।
1: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
5: अच्छा।
1: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
5: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
5: अच्छा।
1: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
5: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
1: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
5: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना।

0: मत वृक्षों के बारे में?
1: हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
0: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1286वीं कड़ी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। पेश है एक ही कलाकार कार्यक्रम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंकज उदास के गाए चंद गीत। श्रोताओं, पंकज उदास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात राज्य के राजकोट शहर में हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंकज उदास एक प्रसिद्ध गजल गायक थे, जो गजलों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपनी गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। पंकज उदास को फिल्म नाम में गायकी से प्रसिद्धि मिली, जिससे उनका एक गीत छिट्टी आई है काफ़ी लोकप्रिय हुआ था।

श्रोताओं, पंकज उदास ने कई फिल्मों के लिए एक पार्श्व गायक के रूप में अपनी आवाज़ दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई एल्बम भी रिकॉर्ड किए हैं और एक कुशल गायक के रूप में पूरी दुनिया में अपनी कला का प्रदर्शन किया।

श्रोताओं, पंकज उदास के पिता का नाम केशु भाई उदास और माँ का नाम जीतू बहन उदास है। उनके सबसे बड़े भाई मनहर उदास ने बॉलीवुड में हिंदी पार्श्व गायक के रूप में सफलता प्राप्त की थी। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उदास भी एक प्रसिद्ध गजल गायक है। वे तीन भाइयों में सबसे छोटे थे और इन तीनों भाइयों में से सबसे पहले गायकी का नाम उन्होंने ही शुरू किया।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पंकज उदास के बारे में। आपको बता दें, भारतीय संगीत उद्योग में उनको तलक अजीज़ और जगजीत सिंह जैसे अन्य संगीतकारों के साथ इस शैली को लोकप्रिय संगीत के दायरे में लाने का श्रेय भी दिया जाता है।

श्रोता पंकज उदास ने फरीदा उदास से शादी की थी। उनकी दो बेटियां हैं नायाब और रीवा उदास। पंकज उदास का निधन 72 वर्ष की उम्र में 26 फरवरी सन 2024 को मुंबई में हुआ, जिससे संगीत जगत को एक बड़ी क्षति हुई।

दोस्तों, पंकज उदास जी जैसे महान फनकार कभी हमसे दूर नहीं होते। उनकी गज़लें और नगमे हमेशा हमारे दिलों में धड़कते रहेंगे।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक

0: केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his 2-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026-2030. The comprehensive roadmap aims to double bilateral economic exchange within the next 5 years and deepen cooperation.

श्रोताओं, अभी आप असमी भाषा में समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम ए माटी रे सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। पेश है व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के जरिए अपने पसंद के गीत सुनने के लिए आप हमें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इस नंबर पर हमारा नंबर है 9474234000, 947423400। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, मेरे जीवन साथी फिल्म से। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है हमारे ये सभी दोस्त, पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन मंगला और राजेंद्र।

हमारे अगले फरमाइश करता है शादीपुर श्री विजयपुरम से, आबिदा, अफजल और अरशद। हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं कूली फिल्म का ये नगमा।

श्रोताओं, ये था दीदार फिल्म का गाना। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा था सूर्यनगरी जोधपुर और राजस्थान से रमेश मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। अब आपको सुनवाते हैं ये गाना सतना एमपी के उमंग मलिक आकांक्षा माही और मजनू का टीला से कमल मधु और सागर की पसंद पर, याराना फिल्म से।

0: श्रोताओं, अगला गीत 20 साल बाद फिल्म से सुनने के शौकीन है जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी, वामिका और वाणी।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत गुरु फिल्म से, जिसे सुनना चाहा है जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस ने।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोता, इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नासगार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और पांच नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान छह प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्तु।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने

0: आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के

0: सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.9 पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 20 मई तक समुद्र में ना जाएं। परसों सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:31 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: हेलो डियर
1: दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि छोटा कदम भी बड़ा होता है जब इरादा सच्चा हो, और दुनिया झुकेगी तेरे आगे जब तू खुद पर यकीन रखे। जो दोस्तों, इस गीतों से भरे प्यारे से सफर में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबाना। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए अपना नाम, पता व फोन नंबर पंजीकृत

दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि छोटा कदम भी बड़ा होता है जब इरादा सच्चा हो, और दुनिया झुकेगी तेरे आगे जब तू खुद पर यकीन रखे जो। दोस्तों, इस गीतों से भरे प्यारे से सफ़र में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबाना। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए अपना नाम, पता व फ़ोन नंबर पंजीकृत करवाइए हमारे इस नंबर पर 9474234000, 9474234000, और सुनिए अपने पसंद के गाने।

0: तो चलिए फिर देर किस बात की है, जुड़ते हैं आज के हमारे पहले दोस्त से जो कि है प्रजापति जी, जो कि रहने वाले हैं गांधीनगर के। हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको?
1: हाँ जी मैम,
0: जी, प्रजापति जी से बात हो रही है हमारी।
1: हेलो डियर फ्रेंड, केशव प्रजापति बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी केशव जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैम, आप बताइए।
0: हम भी बहुत ही बढ़िया हैं। सबसे पहले तो आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम, आप आज कॉल ली मेरी, क्योंकि मेरी फ्राइडे को कॉल आई आई नहीं उस दिन भी। जी
0: जी, क्योंकि हमारे बहुत
1: मैम,
0: सारे श्रोता रहते हैं ना, तो उनको कॉल करना पड़ता है लाइन लाइन से।
1: कोई
0: तो
1: बात नहीं
0: जी
1: मैम,
0: जी
1: उस दिन नहीं मौका मिला, आज मौका मिल गया।
0: चलिए,
1: आपका शुभ नाम
0: आप
1: मैम।
0: खुश हैं ना?
1: जी मैम जी,
0: जी चलिए, अच्छी बात है। आप ये कार्यक्रम सुनते रहिए, आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, ठीक है ना?
1: ओके मैम। जी
0: तो
1: मैम जी,
0: फिर आपसे बात हुई है, तो आप हमें बता दीजिए वो कौन सा प्यारा सा गीत है जो इस कार्यक्रम के ज़रिए आप सुनना
1: मैम
0: चाहेंगे।
1: मूवी का नाम है तकदीर
0: जी
1: और गाने के बोल है जब जब बाहर आए।
0: जी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत है ये।
1: जी मैम, पुरानी मूवी है, उसमें आज जलीला जी का, फ्रीडम का मैम का भी आज बर्थडे है उसमें।
0: जी,
1: जी
0: तो
1: मैम
0: उन्हीं को आप भेंट कर रहे हैं ये गीत, है ना?
1: जी मैम, सभी के लिए। वैसे
0: जी
1: तो
0: जी
1: कुछ मित्रों के नाम ले लो मैम,
0: हाँ,
1: जैसे
0: ज़रूर बताइए।
1: मैम मेरे फादर हैं धर्मवीर जी, उनके कुछ मित्र हैं जैसे पूर्णिमा मैम है, मोनिका जी हैं, शिप्रा जी हैं, सप्तमी जी हैं, संगीता जी हैं, बुल्टी दास जी, पुरुषोत्तम अंकल जी, लोकेंद्र जी, संदीप जी, गोल्डी जी, राकेश जी, पुष्पनाथ जी, आशु जी, गोपाल जी, करण जी, भारत जी, केशव जी, भगवान जी और राम नरेश और जितने भी हैं सभी के लिए मैम, और आपके लिए सबसे पहले मैम, आपने आज कॉल ली मेरी।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो
1: जी मैम
0: चलिए फिर हम सब मिलके ये सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: ठीक है मैम, थैंक यू।
0: धन्यवाद।

0: चलिए अब बात करते हैं श्री राम जी से, जो कि रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: जी नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार। हमारी बात हो रही है श्री राम जी से।
1: मैं पंचराम शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला डोडा पासी गाँव कंठी से।
0: जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। वैसे क्या करते हैं आप?
1: हम खेती बाड़ी करते हैं और बहुत महीने के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है।
0: चलिए तो आप बता दीजिए आपका फीलिंग्स कैसा है, जैसे आज बहुत दिनों के बाद हमसे बात हो रही है, आप जुड़ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को वो शेयर कर दीजिए थोड़ा सा।
1: बिल्कुल जी, बहुत अच्छा है सब कुछ यहाँ पर। अब हम खेती बाड़ी का जो हमारा काम है वो चल रहा है, अभी मक्के की बुआई वो चल रही है, गुड़ाई भी चल रही है कुछ जगहों पर।
0: जी, तो मतलब काम के साथ साथ गाना भी सुना जा रहा है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो तो साथ ही होता है, जहाँ काम काम भी करेंगे और सब कुछ, ये तो साथ में ही चला जाता है, ये तो हमारा बहुत अच्छा साधन है।
0: तो चलिए फिर हम आपको वेट नहीं करवाएंगे, आप काम भी करिए और अपना प्यारा सा गीत भी सुनते रहिए। तो जल्दी से हमें बता दीजिए कौन सा वो गीत है जो इस कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे।
1: दीदी मैं पतंगा फिल्म का गाना सुनूंगा, जो दिल वाले दिल का लगाना है, अच्छा है कर, पर कभी कभी मगर मेरे परिवार जन भी
0: जी
1: और
0: जी
1: एक दोस्त, जैसे तू मेरे घर में देवी और बाकी राकेश जी है, शिमला से अविनाश जी है और बाकी सभी सुनने वाले हैं जितने भी है, और सभी को मेरा नमस्कार, आपसे भी सभी सुनने वाले।
0: जी तो चलिए सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: चलिए अब संपर्क साधा करते हैं दिग्ग दर्शन जी से, जो कि रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश से। हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो दिग्ग दर्शन जी से बात हो रही है?
1: हाँ जी
0: हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी मैडम, धन्यवाद।
0: दिग्ग दर्शन जी, क्या करते हैं आप?
1: मेरा गोल्ड से संबंधित काम है।
0: जी, चलिए अच्छी बात है। और वैसे उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, वहाँ के क्या हाल है आप जहाँ पर रहते हैं?
1: यहाँ तो
0: मौसम
1: गर्मी काफी हो चुकी है,
0: अच्छा, गर्मी चल रही है,
1: 40-42 डिग्री मौसम हो रहा है।
0: 40 तक पहुँच चुका है। तो
1: हाँ
0: ऐसे
1: जी,
0: मौसम में फिर आप क्या करते हैं, मतलब खान पान का खास ध्यान रखते हैं, क्या पहनना
1: हाँ
0: है,
1: जी,
0: क्या खाना है? हेलो
1: यहाँ पर
0: जी।
1: हर साल का ही हमारा है, तो उस हिसाब से चलते हैं हम। गर्मी में कैसे निपटना है गर्मी से।
0: खासकर क्या फ्रूट्स वगैरह आप खाते हैं?
1: यहाँ पे तरबूज खरबूजे बहुत आते हैं,
0: अच्छा, तो अभी सीजन चल रहा है।
1: और गन्ने का रस,
0: जी।
1: बेलपत्थर का रस, और शीतल पे बहुत होते हैं।
0: अच्छा, तो चलिए फिर इस कार्यक्रम से आज आप जुड़े हैं, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सुनना चाहेंगे, सारे शहर में आप सा कोई नहीं।
0: जी, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये, आप किन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे? बैराग,
1: हमारे लघु
0: जी बैराग फिल्म से ये प्यारा सा गीत है।
1: अपने सभी आकाशवाणी मित्रों को। ठीक
0: तो चलिए फिर मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: है मैडम, धन्यवाद।

0: चलिए अब जुड़ते हैं श्री विजयपुरम के हेडो से पाकीज़ा जी से। हेलो डियर फ्रेंड्स। हेलो पाकीज़ा जी से बात हो रही है?
1: जी हाँ, थैंक
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: यू मैम।
0: वैसे क्या करते हैं आप पाकीज़ा जी?

0: अच्छा हाउस वाइफ हैं
1: जी।
0: जी। तो आज आप खाने में आज आपने क्या खास बनाया है?
1: मैंने आज तो ऐसा कुछ खास नहीं बनाया है, मछली बनाई थी
0: अच्छा मछली के साथ खाना खाया है आज आपने
1: जी।
0: जी। और वैसे आपके घर में कौन कौन है?
1: हाँ मैं, मेरे हस्बैंड नहीं,
0: अच्छा तो मतलब हस्बैंड भी सुनते हैं आपके साथ।
1: नहीं मैं वहाँ अकेला सुनती मैंने
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं
1: जी।
0: है। तो बता दीजिए वो कौन सा प्यारा सा गीत है जो इस कार्यक्रम में आज आप सुनना चाहेंगे?
1: सती बरसा दिन तू सावन आया है, ये
0: अच्छा जो अब
1: गाना
0: सावन तो आ चुका है आप मतलब इसलिए गीत गुनगुना भी रही
1: मैंने,
0: है ना
1: ये गाना
0: जी।
1: अच्छा
0: क्रिएचर
1: जी।
0: 3D मूवी का ये गाना है
1: आवाज अच्छा है मैडम, बहुत
0: जी। बहुत बहुत
1: गाना
0: थैंक यू
1: मैडम का
0: जी। थैंक यू बहुत बहुत। तो चलिए फिर हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: ओके।
0: थैंक यू।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं करण वीर जी से, जो कि रहते हैं पंजाब में। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो
0: करण जी से बात हो रही है?
1: जी जी मैडम,
0: करण वीर जी आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मेहरबानी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करणवीर सिंह पौल, जलंधर पंजाब से।
0: जी वैसे करणवीर जी, पंजाब के क्या हालचाल हैं, वहाँ का मौसम कैसा है?
1: पंजाब में तो ऐसा हाल चाल है कि धूप में चाय रख दो ना तो चाय बन के तैयार हो जाएगी, आप बैठ के पी लो आराम से।
0: मतलब सिर्फ चाय पत्ती डालने की देरी है।
1: इतनी इतनी गर्मी हो गई है कि 43-44 टेम्परेचर हो गया है।
0: अच्छा है, वैसे अब गैस की समस्या नहीं होगी ना, अब धूप में रखते ही है और चाय ऑटोमेटिकली बन जाता है ना वैसे।
1: चाय बाहर रख दो ना तो अपने आप बन जाएगी, चाय बन जाती है अपने आप। इतनी इतनी इतनी ज्यादा बढ़िया मौसम हो गया है, इसको बढ़िया मान लो
0: जी
1: या कुछ भी मान लो। मैं तो एक बात और बोलना चाहता हूँ
0: जी,
1: कि ये सब किया भरा हमारा अपना ही है, जो हमारा अपना किया भरा है ना वो ही सामने आ रहा है।
0: जी वो तो है।
1: बेदर्दी से हमने पेड़ जो पेड़ काटे हैं उसका खमियाना हमें भुगतना पड़ रहा है।
0: जी जी सही कहा आपने। जी जी जितनी भी आपदा आते हैं, आपदाएं आती हैं, उनके आधे जिम्मेदार तो हम ही होते हैं ना वैसे। जी वैसे आपने इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुकद्दर का सिकंदर का पिक्चर का गीत है
0: जी,
1: रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा।
0: जी बहुत ही प्यारा सा गीत है, तो फिर चलिए हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: सुनने वाले दोस्त जितने भी हेलो फरमाइश श्रोता रेडियो के एकता ग्रुप के मेंबर है सभी को डेलीगेट रहेगा, और सभी और दोस्तों भी कोई सुनने वालों को रहेगा, और आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी।
0: जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, धन्यवाद।

0: चलिए दिलीप जी से बात करते हैं जो कि रहने वाले हैं राजस्थान के। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: ग्रुप में तो बता रहे हैं कोई
0: हेलो
1: बनता कि नहीं है।
0: हेलो, दिलीप जी से बात हो रही है?
1: मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। कौन?
0: हेलो
1: हाँ जी
0: दिलीप जी से बात हो रही है?
1: जी बिल्कुल, उदयपुर राजस्थान से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ।
0: जी दिलीप जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम
0: वैसे दिलीप जी, क्या करते हैं आप?
1: जी। मैं टेलरिंग का कार्य करता हूँ,
0: जी, इसके अलावा और क्या शौक रखते हैं आप?
1: बस म्यूजिक सुनना,
0: अच्छा, म्यूजिक सुनना पसंद है।
1: प्रति आकाशवाणी जुड़ा रहता हूँ।
0: जी चलिए, अच्छी बात है। वैसे जो है, आप कैसे गाना सुनना पसंद करते हैं, पुराने नए?
1: पुराने गाने ज्यादातर वैसे सुनते हैं,
0: जी
1: कुछ नए भी हैं जो अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, तो आज इस कार्यक्रम से आप जुड़े हैं तो हमें बता दीजिए आज कौन सा वो गीत है जो आप सुनना चाहेंगे।
1: उससे पहले मैं दो लाइनें अर्ज करना चाहूंगा।
0: जी बोलिए।
1: दूर रहने का दिला मत करो, पास रहने से कोई रिश्ता खास नहीं होता।
0: जी
1: आप तो दिल के इतने करीब हैं कि दूरियों का एहसास नहीं होता।
0: जी बहुत बढ़िया आपने कहा। तो आज इस कार्यक्रम से जुड़े तो हमें बता दीजिए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम
1: फिल्म
0: में।
1: का नाम है दिल तो पागल है और टाइटल सॉन्ग है
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग सुनना चाहेंगे, दिल तो पागल है।
1: जी। और मेरे साथ अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ दोस्तों के नाम ले लूं।
0: जी, ज़रूर इजाज़त है, आप बताइए।
1: हेलो फरमाइश, एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के तमाम वो साथी हैं जिनमें गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, श्रीपाल गोयल जी हैं, योगेश जी जांगड़े जी हैं और सुनील जान जी हैं, तुकाराम जाधव जी हैं। आपके साथ में पूरा ग्रुप है और विजयपुरम आकाशवाणी के जितने भी सुनने वाले तमाम साथी भाई बहन हैं वो सभी
0: तो चलिए सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: जी। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: चलिए अब जुड़ते हैं हरि नारायण जी से, जो कि रहने वाले हैं भोपाल के। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो डियर मैम।
0: जी, हरि नारायण जी से बात हो रही है।
1: जी मैम,
0: आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैम
0: जी, वैसे क्या करते हैं आप?
1: बस किसानी काम करते हैं, किसानी का।
0: अच्छा, तो आज आपने उगाया है कि बोआया है, कुछ क्या किया है आपने? कटाई
1: अभी
0: शुरू हो
1: तो
0: गई है
1: खाली पड़े हैं,
0: जी।
1: अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, खाली पड़े हैं। बारिश इंतजार कर रहे हैं, जब बारिश होगी तो बुआई होगी।
0: अच्छा, मतलब बारिश आएगी तो फिर बुआई होगी।
1: जी मैम।
0: जी, वैसे क्या बुआते हैं आपने अपने खेती में?
1: अभी इस टाइम पे तो सोयाबीन बोएंगे जब बारिश होगी तो।
0: अच्छा, सोयाबीन की खेती करेंगे
1: जी
0: जी, नेक्स्ट गर्मी के टाइम में नेक्स्ट खेती करेंगे दूसरी।
1: जी जी
0: चलिए, अच्छी बात है। वैसे इस कार्यक्रम से आप जुड़े हैं, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम, मेरे को अलग अलग मूवी से सॉन्ग सुनना है। दिल में आग लगा सावन का, नहीं जीना नहीं जीना, कोई भी नहीं जीना इस वजह।
0: जी, बहुत ही प्यारा सा गीत है वो, तो चलिए फिर हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: ओके मैम,
0: धन्यवाद।

0: चलिए बात करते हैं आज के हमारे आखिरी दोस्त से, जो कि रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, अविनाश जी से। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो डियर फ्रेंड
0: अविनाश जी से बात हो रही है।
1: जी। मैडम नमस्ते
0: नमस्कार अविनाश जी, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी, शुक्रिया।
0: जी तो टाइम की कमी है तो आप जल्दी से बता दीजिए कौन सा वो गीत है जो आप सुनना चाहेंगे।
1: आज हम सुनेंगे खिलखिलाते धूप में
0: जी
1: जिगर मूवी का सुनेंगे।
0: जिगर मूवी का कौन सा गाना?
1: कौन सा भी सुना दीजिए। जी
0: अच्छा, मेरे दिल को करार आ जाए, ये सुनवा
1: जी ठीक
0: सुनेंगे आप?
1: ठीक ठीक है मैडम
0: ठीक है, चलिए तो आपको सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का ये गाना।
1: जी, शुक्रिया।
0: शुक्रिया।

दोस्तों, हालात जैसे भी हो, मुस्कुराना भी एक हिम्मत होती है। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाज़त।

विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। वक्त हुआ है दोपहर के 3:30। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी कभी धीरे धीरे हमें समझ आता है कि कुछ लोग बिना बोले भी दिल में उतर जाते हैं। पहले बस एक आदत लगती है, फिर वो आदत ज़रूरत बन जाती है और फिर दिल सिर्फ एक ही बात बोलता है, बोलना मैं तुमसे प्यार करता हूँ।

दोस्तों, जब किसी को प्यार होता है तो हवाओं में भी वही नजर आने लगता है। हर बात में बस एक ही चेहरा दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे हवाएं भी उसका ही नाम ले रही हैं।

दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं पर कुछ कहते नहीं, पर सब कुछ बदल देते हैं। हम पहले जैसे जीते थे उनमें बदलाव सा आ जाता है। दोस्तों, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी खोना भी प्यार होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरम्भ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलामन इन ये रोकर हमांग एंग रे तका लमक तेलगी मीडियम वे 438.6 मीटर 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिनका तलुन ही इंग हराप

0: Ngan in ta hui ehang menetin ke ketikuk nye vi hul hi apum pai. Hoi hang ngatil nga angin nga sinta nga muhik in hurit. Ehang rongi taka saat. Ita fan kan ro tala harap nga in.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:30 हुए हैं। सुगम संगीत आज इस कार्यक्रम में सुनिए हरिहरन और नीना मेहता की आवाज़ों में चंद गजलें। पहले पेश है हरिहरन का गाया, कुमार बाराबंकी का कलाम।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप हरिहरन और नीना मेहता की आवाज़ों में चंद गज़लें सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुनेंगे 4:45 पर। शाम 5 तमिल कार्यक्रम में आकाशवाणी के 90 वर्ष पर चर्चा व फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर श्रोता युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे। संध्या 6 कृषि जगत कार्यक्रम में प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान की 6वीं कड़ी आप सुनेंगे। विषय रहेगा पशु प्रजनन में पोषण और प्रबंधन की भूमिका। अतिथि होंगे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दामदेव कुलदीप नामदेव। पॉप मसाला फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम वजन सूचनाएं आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा यादें। साथ ही विश्व एड्स टीका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर चर्चाएं होंगी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद ले पाएंगे रात्रि 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा और रात्रि 10 व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10 विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे छाया गीत। ये तो थे आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्रीटिप्स में जानेंगे लोबिया की खेती के बारे में 5:55 पर। 6:10 पर जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा खेल शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरितमानस गान आप सुनेंगे। जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे सुबह 7:00। 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी आप सुनेंगे। इसी समय विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप खेल जगत कार्यक्रम सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर कलाकार होंगे सुरेश वाडिकर और शारदा। सुबह 9 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का आप आनंद ले पाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर आप नामगिरी पेट्टे कृष्णन का कर्नाटक शैली में नाद स्वरम वादन सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल का आप आनंद ले पाएंगे सुबह 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में आप स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम सुन सकेंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर कहानी के साथ कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुमेश कुमार और पिनाज मसानी को सुन पाएंगे। फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम आप सुनेंगे 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा का समापन होगा, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा जिसमें फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक और फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम

यूं ही गाते रहो, आप सुनेंगे 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा पिंकी लेवसन के गाए गीत सुनेंगे। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायक होंगे चंदन दास। बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा मगलीर उलगम। मंगला कार्यक्रम में 5:30 पर आप त्रिधारा कार्यक्रम सुनेंगे। संध्या 6 बजे किसान मणि कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम में बहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम, वजन सूचनाएं आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में कार्यक्रम देश की शान केंद्रित होगा मजरू सुल्तानपुरी पर। 7 विश्व फेयर पेल दिवस पर दिवस और हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चर्चाएं सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद ले पाएंगे रात्रि 8 बजे। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशी आते हैं आप सुनेंगे। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक तथा रात्रि 9:45 पर मंथन कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज के इस सभा के शेष वक्त प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म आशाएं से। शकील सोहेल के बोल को संगीत दिया है सिराज उपल ने और गायक है सिराज उपल।

लीजिए अब सुनिए राहत फतेह अली खान और सुजीन डिमेलो की आवाज़ों में फिल्म दे दनादन का ये गाना। गीत सईद कादरी का है तथा संगीत प्रीतम का है।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म वी आर फैमिली का ये गाना, जिसे लिखा है इरशाद कामिल और अन्विता दत्ता ने। संगीत शंकर एहसान लौका है तथा फिल्म गायक कलाकार है सोनू निगम और श्रेया घोषाल।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वणक्कम तमिल अमुदम वणक्कम नेर्कले।

0: अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 5:23 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए बंगला कार्यक्रम।
1: कर्म करे जाओ फलेर प्रत्याशा करो ना, भगवद गीता। नमस्कार বন্ধুরা, আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠানে আমার সকল শ্রোতাবন্ধুকে জানাই স্বাগত। আজ রয়েছে যুব শ্রোতাবন্ধুদের জন্য যুববাণীর আসর।

अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
2: राज नहीं, समझदारी है। मैंने AI अपनाया।
1: AI? ये क्या है?
2: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
1: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
2: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
3: AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
4: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
0: किसान भाइयों एवं बहनों, आज लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान की छठवीं कड़ी। लाइव फोन इन कार्यक्रम का विषय है प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भोजन और देखभाल। इस विषय से संबंधित जानकारी हमें देंगे पशुपालन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दावंडे कुलदीप नामदेव। विषय से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए हमारे किसान भाई कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर है 03192-232540। हम पुनः इस नंबर को दोहराते हैं 03192-232540। लीजिए सुनिए कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान की छठवीं कड़ी।
5: नमस्कार साथियों, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान के छठवें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भोजन और देखभाल। इस बारे में बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दावंडे कुलदीप नामदेव। नमस्कार डॉक्टर साहब।
6: नमस्कार,
5: स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
6: थैंक यू, धन्यवाद।
5: डॉक्टर साहब, जैसा कि यह कार्यक्रम मुख्यतः कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देता है और पशुपालकों को इस बारे में जागरूक कर रहा है, हमारे पशुपालक अब कृत्रिम गर्भाधान से अवगत हो चुके हैं
6: जी,
5: तो अब गर्भाधारण के बाद प्रजनन स्वास्थ्य की बात आती है और इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि पशुओं में प्रजनन स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है और इसे बनाए रखने में पोषण की क्या भूमिका होती है।
6: धन्यवाद मैम। सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरा आज का जो बातें आप सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि पशु ही जन सेवा। आपके पास एक पशु रहने से आपको दूध उत्पादन होता है
5: जी।
6: साथ में ही आपको एक पालतू जानवर की तरह वो प्रेम करता है। तो पशु अगर आपके यहाँ है तो आप समझ लीजिए आप बहुत धन्य, मतलब बहुत ही आप लकी व्यक्ति है
5: जी।
6: साथ में मैम ने जिस प्रकार से मुझे क्वेश्चन किया है तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो मैम का जो क्वेश्चन है कि प्रजनन स्वास्थ्य, तो पशुओं की जो शारीरिक और हार्मोन क्षमता होती है और जो प्रजनन मतलब क्या है कि अगर आप उसका जो मतलब हार्मोनल क्षमता और पशुओं की उस शारीरिक और सफलतापूर्वक स्वास्थ्य को बच्चों को जन्म देना, तो उसी को ही हम प्रजनन स्वास्थ्य बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखा जाए कि जब प्रजनन, जब हमारा जो मतलब बच्चादानी है, जो अगर पशुओं का जो बच्चादानी अगर ठीक है, आप उसको नियमित रूप से पोषक आहार दे रहे हैं, जैसे बैलेंस डाइट बोलते हैं, जैसे इसमें क्रूड फाइबर, बैलेंस प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स अगर आप उपलब्ध मात्रा में आप उसको देते हैं तो उसका प्रजनन

0: स्वास्थ्य अच्छा रहता है और साथ में वो अच्छे से बच्चों को जन्म देती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने बोला कि पोषण की क्या जरूरत है
1: जी बिल्कुल,
0: प्रजनन स्वास्थ्य बनाने के लिए, तो मैम मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि प्रजनन स्वास्थ्य बनाने के लिए सबसे पहले ऊर्जा, प्रोटीन और मल्टी विटामिन्स और खनिज द्रव्य, खनिज यानी मिनरल्स, इसका बहुत बहुत जरूरी है। और साथ में थोड़ा एक्सरसाइज, ना वो ज्यादा मात्रा में ना हो और कम मात्रा में भी नहीं हो। और साथ में मैं एक सिंपल उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इंसान आज की तारीख में इंसान, हम जैसे दाल, रोटी, सब्जी, नमक, पानी और साथ में जो हमारा पोषक, जैसे एक थाली में दो सब्जियां रहती है, पापड़ रहता है, अचार रहता है, उस प्रकार से ही मैं श्रोता को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बार श्रोता है उसको हरा चारा ही देते हैं, तो उसके वजह से पशुओं का जो प्रजनन स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जिस प्रकार से हम दाल, चावल, रोटी, दो सब्जियां खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जिसमें जैसे दाल से आपको प्रोटीन मिलता है, चावल से फाइबर मिलता है, विटामिन्स मिलता है, पापड़ से, तो इस प्रकार का हमारा जो ताट है, थाली है, जिस प्रकार से हमको जो पोषण मिलता है, उस प्रकार से ही आप नियमित मात्रा में अगर हरा चारा वो नियमित रूप से, अगर जैसे हाईली प्रोटीन चारा भी उपलब्ध है, जैसे बरसीम लूसन हो गया, पैराग्रास हो गया, या फिर जो अगर हरा चारा अगर उसी मात्रा में, जैसे आप 60-70% हरा चारा देते हैं, 10-20% उसमें सूखा चारा जिसको बोलते हैं ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर 60-80%, 15-20% सूखा चारा मतलब ड्राई पाउडर और कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर मतलब क्या होता है कि जिसमें मल्टीविटामिन, प्रोटीन और सब मिलता है, मतलब पशु आहार जो रेडीमेड मिलता है। तो और साथ में जैसे हम खाने में नमक खाते हैं, उस हिसाब से हम मिनरल मिक्सचर उसको देते हैं, तो उसका एक थाली बन जाएगा गाय का, जिसमें हरा चारा, सूखा चारा, कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर, तो उसका स्वास्थ्य बनाए रखेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पशुओं को मैं संबोधित करना चाहता हूँ कि आप पशु स्वास्थ्य के लिए रहे, अगर वो बच्चा भी नहीं देती है तो पशु को अच्छा स्वस्थ रखने के, क्योंकि जब बच्चा देगा तो उसका शरीर स्वस्थ रहना है, अगर वो प्रेग्नेंट भी नहीं है तभी भी उसको अच्छे मात्रा में कम से कम कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर 1-1.5 kg दीजिए, साथ में सूखा चारा और हरा चारा दीजिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने मिनरल मिक्सचर की बात की, पर हम इस बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे कि इसे कैसे बनाते हैं और प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम फॉस्फोरस का क्या महत्व है।
0: सबसे पहले मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि मिनरल मिक्सचर में मल्टीविटामिन्स और खनिज द्रव्य जिसको बोलते हैं मिनरल्स, जिसमें मिनरल्स देखा जाए तो मिनरल्स हमारे जैसे हमको इंसानों को जैसे शरीर के लिए पोषण के लिए जैसे मल्टीविटामिन मिनरल्स की जरूरत है, वैसे गायों और बछड़ों के और जानवरों के लिए मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की बहुत ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है, तात्पर्य है कि जो खनिज मिनरल मिक्सचर है, मिनरल मिक्सचर में आपको हर किस्म का मिनरल्स मिल जाते हैं। मिनरल्स यानी क्या, जिसमें जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीज हो गया, जो उसको जो बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं उसे, ये भी मिलता है, साथ में मल्टीविटामिन भी मिलता है। और मिनरल मिक्सचर अगर आप थोड़ा बहुत, अगर बड़ा गाय है 35-40 ग्राम अगर देते हैं या 50-100 ग्राम देते हैं, तो उसका जो तापतुर्त जो जो जो उसकी शरीर की जो जो गरज है, जो नीड है, उसकी फुलफिल होती, जिसमें जैसे आयरन के अभाव से गॉइटर होता है, विटामिन ए की वजह से कम देखना होता है, जैसे कॉपर के वजह से इनफर्टिलिटी होती है, तो वो वैसे सारी बीमारियां नहीं होगी।
1: तो डॉक्टर साहब, इसे बनाते कैसे हैं, मतलब आप बोल रहे हैं ये बहुत सारे मिनरल का मिक्सचर है, पर इसे बनाएंगे कैसे?
0: इसको बनाने का एक स्वाभाविक तरीका है कि जितने

0: फार्मास्यूटिकल एनिमल फार्मास्यूटिकल कंपनी है,
1: जी
0: ये उस प्रकार से फॉर्मूलेशन करके, जैसे अमाइनो एसिड, मतलब जितने भी फॉर्मूलेशन करके ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी में बनती है,
1: बनती है।
0: तो जिसमें सब मिनरल्स विटामिन्स ऐड करके एक अच्छे कंपनी का मिनरल मिक्सचर आता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी मिनरल मिक्सचर खरीदे तो अच्छे कंपनी का ही मिनरल मिक्सचर खरीदे, जिससे आपके आपके गाय को प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे पशुओं में पोषण की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, या आम तौर पर कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं?
0: जी मैम, पशुओं में पोषण की या न्यूट्रिशन की कमी के कई प्रकार की बीमारियां, स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती है। ये कमी ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज यानी मिनरल्स के या सूक्ष्म पोषक तत्वों से हो सकती है।
1: जी
0: जैसे आपने जैसे हम देखिए कि हम रोटी खाते हैं तो
1: जी
0: हमको एनर्जी मिलती है। अगर हम रोटी ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएं, तो हम उतना काम नहीं कर सकते। वैसे ही देखा जाए कि पोषण के कमी से एनर्जी एनर्जी अगर उसको उसमें अच्छे मात्रा में अगर उसको ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर नहीं दिया तो उसको एनर्जी की कमी होगी। साथ में प्रोटीन, प्रोटीन ये बहुत आवश्यक घटक है।
1: जी
0: प्रोटीन से क्या होता है कि मांसपेशियां जकड़ होती है
1: जी
0: का, कमजोर वृद्धि रुकना, कमजोर विकास नहीं होगा,
1: जी
0: वजन नहीं बढ़ेगा,
1: जी
0: वजन ना बढ़ना, ये जो बीमारियां है, दूध उत्पादन कम होता है। अगर प्रोटीन, अगर मान के चलिए प्रोटीन मतलब प्रथिने, इसको हम हिंदी में प्रथिने बोलते हैं, अगर उस अच्छी मात्रा में अगर आप प्रथिने देंगे तो ये पोषण की से कमी होने वाली बीमारियां नहीं होंगी। साथ में कैल्शियम,
1: जी
0: कैल्शियम अगर कम होता है गायों में तो
1: जी
0: मिल्क फीवर होने का चांसेस रहता है। मिल्क फीवर यानी क्या है, सरल भाषा में बताना चाहता हूँ कि अगर मान के चलिए एक गाय प्रेग्नेंट है और आप उसको कैल्शियम नहीं दे रहे, कैल्शियम युक्त आहार नहीं दे रहे, तो
1: जी
0: उसमें क्या होगा कि तुरंत जब वो अच्छा दूध देने वाली नस्ल है कि वो जैसे बछड़ा पैदा दे करेगी, तो उसके बाद उसके इसमें बछड़े माँ के तरफ से जो पहला दूध रहता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत जाएगी और उसको मिल्क फ्योर होने के चांसेस रहते हैं। और फास्फोरस, फास्फोरस की कमी से
1: जी
0: बाँझपन, भूख कम लगना, हड्डियों में कमजोरी, और फास्फोरस कम होने से मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ मैं कि बहुत बार देखिए जानवर है ना दीवारों को चाटते हैं,
1: जी
0: ये फास्फोरस का
1: की
0: लक्षण है,
1: कमी की वजह
0: कमी की
1: से।
0: वजह से होता है। और मैग्नीशियम, जैसे बहुत सारे बार आपको जानवर देखिए देखेंगे आप गाय बैलों में, इवन पालतू जानवरों में, कि मांस में कंपन आता है, थरथराहट होना है, तो ये मैग्नीशियम की वजह से होता है। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी से आंखों की समस्या, कमजोर बछड़े पैदा होना, प्रजनन स्वास्थ्य पे उसका बहुत बड़ा असर होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर लाइन पर है तो चलिए उनसे बात कर लेते
0: जी
1: हैं। हेलो हेलो,
0: जी हाँ जी
1: नमस्कार।
0: हाँ
1: पहले तो आप अपना
0: क्या
1: नाम
0: था,
1: बताइए, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं।
0: मैडम हम शादीपुर से बोलते हैं, मेरा नाम शीलम्बो है। जी
1: जी, इलंगो जी, अपना जो प्रश्न है वो डॉक्टर साहब से पूछिए।
0: हेलो,
1: जी हेलो जी, इलंगो जी, अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
0: मैडम
1: हेलो
0: मेरे को ना, मैडम हम सर गुड इवनिंग सर,
1: हेलो,
0: नमस्ते
1: नमस्कार।
0: सर। नमस्ते
1: नमस्कार जी, बोलिए।
0: सर, सर मेरे को ना ये है कि मेरे तो अपना बकरी का फार्म है अपना, तो मेरे को ना सर, मेरे बकरी का ना ये लोकल ब्रीड है सर, लोकल ब्रीड का कि सर वेट गेन करना है सर और नस्ल का सुधार करना है सर, करना
1: जी,
0: चाहिए क्या करना चाहिए सर,
1: तो
0: बताएंगे अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, इलंगो जी ने पूछा है कि
0: जी
1: उनके पास बकरी है तो वो चाहते हैं कि उनका नस्ल सुधार हो।
0: जी अच्छा, नस्ल सुधारना, जी
1: तो कैसे करना है बताइए।
0: मैं पहले इलुंगो जी, श्री इलुंगो जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे अंदमान द्वीप समूह में जो लोकल ब्रीड है गोट, जिसको अंदमानी गोट बोलते, उसका वजन बहुत कम रहता है, जैसे 8 से 15, तो हमारे किसान भाई बहनों को उसका कम लाभ मिलता है।

0: अगर इस अगर एक नस्ल को हम सुधारित नस्ल किया जाए तो उसमें अगर क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम है, जैसे हमारे यहाँ पे हम एआई के थ्रू, एआई माध्यम, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अभी बकरियों में हम करते हैं, जिसमें असली अच्छे नस्ल की हम ब्रीड मेनलैंड से एआई सीमेन के थ्रू लिक्विड नाइट्रोजन में ला के हम उसको आर्टिफिशियली उसके गर्भाधान में डालते हैं जब वो हीट पे रहती है। तो
1: जी
0: बहुत सारे ऐसे ऐसे हम नस्ल बाहर से ला रहे हैं और हम यहाँ पे लोकल लोकल की इसमें डाल रहे हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमेशा, अगर आपकी गाय हीट पे है, मतलब हीट पे है, तो आप उसको हॉस्पिटल, आपके नज़दीक हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में लाइए, उसको यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान करके उसके इसमें अच्छे अच्छे ब्रीड का वीर्य डाल के उसको अच्छी नस्ल पैदा होंगी। फिर 3-4 साल में जो उसकी नस्ल होंगी, उसका जैसे मेनलैंड में देखिए, जैसे उस्मानाबादी है, बारबारी है, कोकण कन्या है, तो इसमें दो दो बछड़े भी पैदा होते हैं और जिसका वजन 30 से 35 केजी रहता है। तो आपको आपका नस्ल में सुधार होगा और यहाँ पे जो दूसरी जो ब्रीड बनेंगी, यहाँ के लोकल ब्रीड को हम क्रॉस ब्रीड करेंगे तो वो अच्छे तरीके की नस्ल ब्रीड बनेंगी और उसका वजन भी अच्छी तरह से बढ़ेगा और किसानों, भाई बहनों को लाभ होगा। थैंक यू, धन्यवाद।
1: तो एलोंगो जी, उम्मीद करते हैं आपने अपने प्रश्न के उत्तर प्राप्त कर लिए होंगे। तो डॉक्टर साहब, अब हम
0: अच्छा,
1: लेते हैं एक छोटा सा अंतर।
2: धन्यवाद। अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
3: राज नहीं, समझदारी है। मैंने एआई अपनाया।
2: ये क्या है?
3: एआई यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
2: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
3: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
4: हाँ, एआई अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
5: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
1: कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। और अब हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भोजन और देखभाल विषय से संबंधित, और हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दावंडी कुलदीप नामदेव। तो डॉक्टर जी, हमारा जो अगला प्रश्न
0: जी
1: है वो है, गर्भावस्था के दौरान पशुओं की देखभाल कैसे करनी चाहिए?
0: जी गर्भावस्था के दौरान, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है मैम, कि बहुत बार पशुपालक जब अपनी गाय या फिर जानवर जब वो गर्भावस्था में रहती है, या मान के चलिए कि गर्भ मतलब बच्चा पैदा होने के पहले 3-4 महीने पहले जो देखभाल करनी चाहिए, उससे वो भूल जाते हैं कि उसको क्या क्या प्रोटीन पोषक आहार देना चाहिए। जैसे मैं बताना चाहता हूँ मैम, कि गर्भावस्था के दौरान पशुओं को उसका गर्भ और उसका भी स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए सबसे पहले उसको मल्टी विटामिन्स, एनर्जी, क्रूड फाइबर और प्रोटीन की आवश्यकता है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर गर्भावस्था में पशुपालक, मान के चलिए कि जैसे मैंने बताया था कि मेंटेनेंस राशन, जैसे नॉर्मल अगर नॉन प्रेग्नेंट गाय भी है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्रूड फ्रूटी कॉन्सेंट्रेट फीड, मतलब पशु आहार जो रेडीमेड पशु आहार मिलता है, वो कम से कम 1 से 1.5 केजी कम से कम देना चाहिए। पर जब गर्भावस्था, गर्भधारण अवस्था जब रहती है,
1: जी
0: गर्भधारण अवस्था में मेरे हिसाब से कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर जो है कम से कम 1.5 से 2 केजी रहना चाहिए,
1: जी
0: जिसमें उसको कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर में जैसे पशु पशु रेडीमेड पशु फीड जो है, जिसमें उसको प्रोटीन अच्छा मिलेगा, उन्हें एनर्जी मिलेंगी, साथ में उसमें अच्छे तरीके से अगर आप ग्रीन फॉडर और ड्राई फॉडर, जैसे ग्रीन फॉडर में देखा जाए कि लिसम लेगुमिनस प्लांट है जिसमें लूसर्न है, पैरा ग्रास है, वो भी खिला सकते हैं। ड्राई फॉडर जैसे आप हे भी बना सकते हैं, या फिर आपका पॉल है
1: जी
0: उसको प्रक्रिया करके उसको भी आप खिला सकते।

0: सकते हैं, पर मैंने पहले ही बताया है कि मात्रा जो है प्रोपोर्शनेट में हो, 70-80% ड्राई हरा चारा, 15-20% सूखा चारा, और थोड़ा बहुत मिनरल मिक्सचर डेली 50-100 ग्राम, और साथ में उसको प्रेगनेंसी में खास करके 150-2 kg कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर अगर मिलता है, कॉन्सेंट्रेट फूड यानी जो रेडीमेड पशु आहार है, पशु चारा मिलता है, वो अगर देने से उसका प्रेगनेंसी अच्छा रहेगा। साथ में एक मैं एक बताना चाहता हूँ कि डिलीवरी के बाद मैं एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, बहुत पशुओं को नहीं पता ये, कि
1: जी
0: डिलीवरी के बाद हमेशा मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि 1 लीटर के पीछे कम से कम 400 ग्राम कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर देना चाहिए, मतलब पशु आहार देना चाहिए। अगर आपकी गाय 10 10 लीटर दूध देती है, तो 4 लीटर कम से कम कॉन्सेंट्रेट फूड देना चाहिए, पशु आहार देना चाहिए, क्योंकि उसके बॉडी को और उसके दूध में को भी एनर्जी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आप प्लीज़ वो ध्यान में रखिए कि पशु आहार 400 ग्राम प्रति 1 लीटर देना जरूरी है।
1: जी बिल्कुल। तो
0: धन्यवाद
1: और एक कॉलर लाइन पर
0: जी।
1: है, तो चलिए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हाँ जी
1: हेलो
2: मैडम, हेलो,
1: जी नमस्कार। पहले तो आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं बताइए।
2: ईश्वर राव चक्कर गांव से।
1: जी तो ईश्वर जी, आपका क्या प्रश्न है पूछिए डॉक्टर जी से।
2: हमको ये
0: नमस्कार
2: प्रश्न है
0: जी,
2: कि
0: बोलिए
2: गाय का
0: ईश्वर राव
2: दूध
0: जी
2: कैसे बढ़ाए। हेलो,
0: जी, मैं सुन रहा हूँ
2: गाय का दूध। हेलो
0: जी।
1: जी,
0: ईश्वर राव
1: उनका
0: जी,
1: प्रश्न है गाय का दूध कैसे बढ़ाएं।
0: अच्छा, धन्यवाद ईश्वर राव जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है,
2: और
0: इसके लिए मैं
2: बच्चा भी
0: आपको बहुत
2: हेल्दी
0: बहुत
2: होना
0: धन्यवाद
2: चाहिए। हेलो
0: देना चाहता हूँ। गाय का
2: सर,
0: दूध बढ़ाने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे सबसे पहला है कि हमारा जो जो घर है, जैसे हम
2: हाँ
0: उसको शेल्टर या घर जो है गाय का, वो
2: हाँ
0: एकदम
2: हाँ
0: अच्छा साफ सुथरा रहना चाहिए। उसमें मतलब हमेशा उसका जो गोबर है वो हमेशा साफ रख, मतलब हर हमेशा घर स्वच्छ रहना चाहिए, जिसमें उसको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। साथ में
2: नहीं, वो तो साफ तक फैन भी लगाया सर,
0: जी
2: हम तो फैन भी लगा के रखा है।
0: अच्छा, साथ में
2: हाँ
0: मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथ में दूसरी बात कि अगर आप उसे अच्छे से, मतलब जब आप उसका घर अच्छा है, तो उसको उसको हर 3 महीने में उसका डीवर्मिंग करना है, कीड़ा का दवाई देना है, जिसमें उसका जो मतलब कीड़ा मर जाएगा। जैसे हम खाना खाने के पहले हाथ धोते हैं, परंतु गाय तो बेचारी
2: हाँ
0: वैसे ही खाना खा लेती है, तो उसका हर 2-3 महीने में कीड़ा दवाई देने से उसके पेट में कीड़ा नहीं रहेगा। साथ में उसको मिनरल मिक्सचर हर दिन 50-100 ग्राम देना है। अगर दूध बढ़ाना है तो उसको
2: है
0: सबसे
2: सर।
0: पहले आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि उसको मिनरल मिक्सचर 50-100 ग्राम, साथ में उसको कॉन्सेंट्रेट फीड, जब भी मैंने पहले बताया कॉन्सेंट्रेट फीड यानी चारा, यानी जो पशु आहार मिलता है रेडीमेड बाजारों में, कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेट फूड बोलते हैं, जिसमें आज मैंने खुद कुछ आर्टिकल्स पढ़े, जिसमें अगर मान के चलिए अगर आप आपका 10 kg दूध है गाय दे रही है जो हाई यील्डिंग काऊ है, और 10 kg दूध आपको मेंटेनेंस करना है बहुत सालों तक, मतलब जब वो मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा दूध देना है, 10 kg दूध देने के लिए आपको 400 ग्राम प्रति लीटर कॉन्सेंट्रेट फूड देना पड़ेगा। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है, जैसे मैंने पहले बताया कि उसके शरीर के लिए भी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत प्रोटीन और एनर्जी कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर से मिलता है। साथ में आपको उसका हरा चारा बहुत सारे प्रकार के हैं, वो भी उसको खिला सकते हैं। जैसे मैंने मैम को पहले भी बताया कि 60-80% उसके पशु चारा चाहिए चाहिए, तो हरा चारा में बहुत सारे चारे हैं, बरसीम है, लूसन है, पैराग्रास है, नेपियर है, सुपर नेपियर है, वो भी देना चाहिए, और साथ में ड्राई फॉडर जैसे पॉल है, उसको प्रक्रिया करके अगर उसको देंगे, तो ये होगा एक संतुलित आहार। जैसे हम खाते हैं संतुलित आहार, दाल चावल रोटी सब्जी, वैसा उसका संतुलित आहार होने से उसका दूध अच्छे से बढ़ेगा। धन्यवाद।
1: तो ईश्वर जी,

0: उम्मीद करते हैं आपने अपने प्रश्न के उत्तर प्राप्त कर लिए होंगे।
1: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
2: राज नहीं, समझदारी है। मैंने AI अपनाया।
1: AI? ये क्या है?
2: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
1: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
2: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
3: हाँ, AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
4: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
0: ऐसा देखने को मिलता है डॉक्टर साहब कि उच्च दुग्ध उत्पादन यानी हाई यील्डिंग वाली गाय जो है उसके कुछ घंटों बाद, उनके जो प्रसव है उसके कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद कभी कभी बैठ जाती हैं या खड़ी नहीं हो पाती। इसके संभावित कारण क्या है तथा इस स्थिति को
5: जी
0: रोकने के लिए और उचित उपचार के लिए क्या करना चाहिए?
5: जी मैम, धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा सरल भाषाओं में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे भारत में जितने भी श्रोता है गाय पालते हैं उनको एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत बार आपके यहाँ जो हाई यील्डिंग एनिमल है, हाई यील्डिंग यानी ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाला, जैसे गिर हो गए, गबड़ा हो गया, ये जो गाय है ये गाय ज़्यादा से ज़्यादा दूध देता है, जर्सी हो गया, HF क्रॉस हो गया, तो इस गाय में एक्चुअली अक्सर क्या देखा जाता है कि जो ज़्यादा गाय देती है उसमें अगर प्रेगनेंसी के वक्त, मैंने पहले भी बताया कि अगर वो प्रेग्नेंट रहती है तो उसको प्रेगनेंसी राशन, पहले भी मैंने बताया, साथ में अगर आप जब वो डिलीवरी होती है तो साथ में उसको पहले से, सबसे पहले आपको ये करना है कि उसको आपका कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर ज़्यादा से ज़्यादा देना है, साथ में उसको हरा चारा सूखा चारा तो देना ही है, परंतु सबसे पहले उसको बाजार में जाके ऑस्टियोकैल्शियम, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, ये सबसे मेन स्रोत है। अगर एक कैल्शियम अगर कम हो जाने से मिल्क प्योर होने के संभावना, मिल्क प्योर यानी क्या होता है, वो बैठ जाना, तो क्योंकि देखा जाए कि दूध के माध्यम से गायों का कैल्शियम इतना चला जाता है हड्डियों से, शरीर से, बछड़े के रूप में, बछड़ा जब गाय दूध पीता है तो इतना चला जाता है, इसीलिए उसके इसमें कैल्शियम की कमी होती है और वो बैठ जाती है। ऐसे वक्त सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कैल्शियम फास्फोरस को का एक अगर रेडीमेड फूड अगर देते हैं तो ये प्रॉब्लम, समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर कुलदीप, आपने पशुपालकों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बताया और उम्मीद करते हैं कि आपके बताए गए सुझावों व सलाहों पर हमारे किसान भाई ज़रूर अमल करेंगे। डॉक्टर साहब, पशुपालकों को उपयोगी जानकारी देने के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद।
5: धन्यवाद मैम।

0: अभी आप फोन इन के माध्यम पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान की छठवीं कड़ी सुन रहे थे। विषय था प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भोजन और देखभाल। जानकारी दे रहे थे विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दावंडे कुलदीप नामदेव।
1: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
2: राज नहीं, समझदारी है। मैंने AI अपनाया।
1: AI? ये क्या है?
2: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
1: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
2: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
3: हाँ, AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।

0: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप सुनेंगे सोमवार 25 मई 2026 को संध्या शाम 6 बजे। बातचीत का विषय होगा सेक्स सीमेन से मनचाही संतान पैदा करना, और जानकारी देंगे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नागनाथ भोजने। तो मिलते हैं साथियों अगले कार्यक्रम में, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे, यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और साथियों के गाए फिल्म चुपके चुपके के एक गीत के साथ। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

लीजिए अब सुनिए कुणाल गांजावाला और सुजिन डी मेलो की आवाज़ों में सैयद कादरी की गीत रचना। संगीत प्रीतम का है तथा फिल्म का नाम है दे दना दन।

राहत फ़तेह अली खान और तुलसी कुमार को अभी आपने सुना फिल्म डेंजरस इश्क में। गीत शब्बीर अहमद का था तथा संगीत हिमेश रेशमिया का।

लीजिए अब सुनिए द बुमान और सुजेन डीमेलो की आवाज़ों में फिल्म क्रू का ये गाना। गीत कुमार के तथा संगीत प्रीतम का है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, अब हम आपको आज के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 7:15 पर आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा यादें, साथ ही विश्व एड्स टीका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर चर्चाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद ले पाएंगे रात्रि 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा और रात्रि 10:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेशे आते हैं। रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये तो थे आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम और अब कल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें। कल सुबह 5:30 पर आप सुनेंगे अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स में जानेंगे लोबिया की खेती के बारे में 5:55 पर। 6:10 पर जलयानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा खेल शीर्षक पर 6:15 पर। जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे सुबह 7:00। 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी आप सुनेंगे। इसी समय विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में खेल जगत के तहत आप सुनेंगे ब्रिस्क वॉकिंग के बारे में और कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। सुबह 9:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का आप आनंद ले पाएंगे। ये तो थे कल प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम।

0: कल दिन में 11 बजे आप सुनेंगे NCERT फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। चित्र गीत का समय रहेगा 11:30। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुमेश कुमार और पिनास मसानी को सुन पाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का समय रहेगा 1:30। ये तो थे कल दोपहर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्ले पहुंचे। श्री मोदी भारत नॉर्डिक सहयोग को नई दिशा देने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण द्वारा संकट

संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों के संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया और लिटिल अंडमान के लिए निर्धारित MV कैमल बे की 24 मई को होने वाली यात्रा रद्द की गई, नई यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेरलांड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। वर्तमान में भारत और पांच नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने स्वीडन की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी इस यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन अभियान, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बने हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिंथिला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुनहाली कुट्टी शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। आयकर विभाग द्वारा नए आयकर अधिनियम 2025 एवं नए आयकर नियम 2026 पर श्रीविजयपुरम में कल सुबह 10 बजे आपदा भवन के सम्मेलन कक्ष में संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय हितधारकों एवं करदाताओं को नए आयकर अधिनियम और नियमों की जानकारी प्रदान करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम 2026 के अंकों के सत्यापन एवं पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कार्यक्रम जारी किया है। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राज्य नोडल अधिकारी ने छात्रों को ऑनलाइन आवेदन से पहले अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत होता है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, कार्यशाला का आयोजन और जहाज

आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के सहयोग से पिछले दिनों संकटग्रस्त प्रजाति दिवस पर कार्यशाला सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पुदुचेरी के 55 मछुआरों, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को समुद्री संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ एम मुर्गनंदम ने संकटग्रस्त जलीय प्रजातियों की स्थिति, संरक्षण और प्रबंधन पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कोरल रीफ, मैंग्रोव, सीग्रास, मुहानों, नदियों, खुले महासागरों एवं तटीय पारितंत्रों की जैव विविधता तथा समुद्री स्तनधारियों, मछलियों और समुद्री शैवाल जैसी प्रजातियों का उल्लेख किया। उन्होंने फिशिंग डाउन द ओशन की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जलवायु परिवर्तन और जिम्मेदार मत्स्य प्रथाओं पर जोर दिया। मुख्य अतिथि ने डुगोंग संरक्षण, समुद्री कछुओं के तटों की सुरक्षा, शार्क एवं रे प्रजातियों के संरक्षण तथा रीफ पुनर्स्थापन उपायों के महत्व पर भी बल दिया। इस अवसर पर मरीन मैकेनिकल इंजीनियर के बाल नायक, मत्स्य वैज्ञानिक डॉ. सी बाबू और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के डॉ. मृणाल कुमार दास सहित मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने अपने विचार रखे। तकनीकी कारणों से 24 मई को होने वाली एमवी कैमलबे की लिटिल अंडमान की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। जिन यात्रियों के पास टिकट हैं, उन्हें टिकट का पूरा मूल्य वापस किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसके स्थान पर अब एमवी सिंधु 24 मई को सुबह 8 बजे हेडो जेटी से लिटिल अंडमान के लिए प्रस्थान करेगा तथा उसी दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से राजधानी श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। एमवी सिंधु के टिकट कल सुबह 9 बजे से आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे। टिकट डीएसएस ई टिकटिंग पोर्टल dss.andamannicobar.gov.in/e-ticketing के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टार्स टिकट काउंटर से भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। सुविधा हेतु ई टिकटिंग पोर्टल के लिए क्यूआर कोड भी उपलब्ध कराया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा राजधानी श्री विजयपुरम में फुटबॉल, कायाकिंग और कैनोइंग तथा रोइंग विधाओं में खिलाड़ियों के चयन के लिए 23 मई को ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। चयन ट्रायल आवासीय योजना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों के लिए होंगे। कायाकिंग और कैनोइंग तथा रोइंग विधाओं के लिए न्यूनतम 15 मीटर तैराकी क्षमता रखने वाले तथा जिला, राज्य एवं स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक खिलाड़ियों से 23 मई को सुबह 9:30 बजे साई श्री विजयपुरम में प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी भारत नॉर्डिक सहयोग को नई दिशा देने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण द्वारा संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों के संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। और लिटिल अंडमान के लिए निर्धारित एमवी कैमलबे की 24 मई को होने वाली यात्रा रद्द कर दी गई है। नई यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के

अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 11 स्थानों पर वर्षा हुई। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में वर्षा होगी। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर पर तेज हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 22 मई तक समुद्र में ना जाएं। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल। लीजिए अब सुनिए जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। एमवी रानी लक्ष्मी 20 तारीख को सुबह 7 बजे माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 21 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। लिटिल अंडमान जाने के लिए एमवी भारत सीमा कल यानी 19 तारीख को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान और कार निकोबार की यात्रा पर 21 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 22 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट अपनी अगली यात्रा पर 27 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कचाल नैनकौरी माखाचूहा और अरफा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 30 तारीख को रात 8:30 पर कैमल बे से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुंचेगा। जलयान सिंधु नैनकौरी और कचाल होते हुए कैमल बे जाने के लिए 19 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान 21 तारीख को सुबह 6 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी कमोटा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम आएगा। एमवी रानी चंगा कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्टेट आइलैंड कल दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटन कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम पहुंचेगा। अभी एमवी कमोटा स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 20 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। जन सूचनाएं, इसके अंतर्गत सुनिए एक सूचना। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैर कानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 03192240127, 03192238881 या 1070। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531888844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:21 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

फिल्म रुदाली में आपने लता मंगेशकर को सुना, संगीत भूपेंद्र हजारिका का था। लीजिए अब सुनिए अभिजीत और पूर्णिमा को फिल्म बीवी नंबर 1 में। देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमारी छिपी हुई ताकत और क्षमता को पहचानने का अवसर देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में सफलता का वास्तविक स्वाद चखता है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में आशा और कर्म में ईमानदारी हो, तो अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। इसलिए कभी हार मत मानिए, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को मजबूत और महान बनाता है। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, विश्व एड्स टीका दिवस हर वर्ष आज के दिन यानी 18 मई को मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ प्रभावी टीका विकसित करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने और वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना है। HIV एक ऐसा वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे व्यक्ति कई अन्य बीमारियों का शिकार हो सकता है। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि एड्स से बचाव के लिए टीके का विकास कितना आवश्यक है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार ऐसे टीके पर काम कर रहे हैं जो HIV संक्रमण को रोक सके। हालांकि अभी तक इसका पूर्ण रूप से सफल टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई महत्व शोध जारी है। दोस्तों, विश्व एड्स टीका दिवस पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाएं, विद्यालय और सामाजिक संगठन जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां और सेमिनार आयोजित करते हैं। लोगों को सुरक्षित जीवन शैली अपनाने, नियमित जांच कराने और HIV संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना करने का संदेश दिया जाता है। यह दिवस हमें मानवता, जागरूकता और स्वास्थ्य सुरक्षा का महत्व समझाता है तथा एड्स मुक्त समाज बनाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष आज के दिन यानी 18 मई को मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा इतिहास, संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा की गई थी। दोस्तों, संग्रहालय किसी देश या समाज की ऐतिहासिक धरोहर, कला, विज्ञान, संस्कृति और प्राचीन वस्तुओं को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ रखी गई वस्तुएं हमें हमारी अतीत की जानकारी देती है और आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से जोड़ने का कार्य करती है। संग्रहालय केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि शिक्षा और ज्ञान का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इस दिवस पर दुनिया भर के संग्रहालयों में विशेष प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थी, शोधकर्ता और पर्यटक संग्रहालयों का भ्रमण कर विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज के आधुनिक समय में कई संग्रहालय डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके लोगों को वर्चुअल रूप से भी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमें अपनी संस्कृति, विरासत को सुरक्षित रखने और इतिहास के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। यह दिवस समाज में ज्ञान, कला और संस्कृति के संरक्षण की भावना को मजबूत बनाता है। दोस्तों, आज माह का तीसरा सोमवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें।

दोस्तों, खत केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं होते, बल्कि वे भावनाओं, प्रेम और अपनापन का सुंदर माध्यम होते हैं। अपने प्रियजनों को लिखा गया पत्र दिल की उन बातों को व्यक्त करता है जिन्हें कभी-कभी शब्दों में कहना कठिन होता है। एक खत रिश्तों में मिठास, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत

बनाता है। आज के आधुनिक समय में मोबाइल और इंटरनेट ने बातचीत आसान कर दी है, फिर भी हाथों से लिखा गया खत अपनेपन की विश्वास अनुभूति देता है। खत वर्षों बाद भी यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं और पढ़ने पर वही प्रेम और भावनाएं दोबारा जीवित हो उठती हैं।

दोस्तों, आकाश की तरह सच्चा प्रेम भी विशाल, शांत और अनंत होता है। जिस तरह खुला आसमान हर मौसम में अपनी जगह पर बना रहता है, उसी तरह एक सच्चा और सहायक साथी जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ निभाता है। जब जीवन कठिन लगता है, तब उनका साथ उसी ठंडी हवा की तरह सुकून देता है जो खुले आसमान के नीचे महसूस होती है।

दोस्तों, कभी आसमान को देखकर उनकी मुस्कान याद आती है, कभी बारिश की बूंदों में उनकी बातें सुनाई देती है। हर रास्ता, हर मौसम और हर धड़कन जैसे उनसे जुड़ जाती है। सच्चा प्रेम समय के साथ कभी कम नहीं होता, बल्कि यादों

के रूप में और भी गहरा हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग दूर होकर भी हमेशा हमारे सबसे करीब रहते हैं, क्योंकि उनका प्यार हमें दिल के हर कोने में बस जाता है।

दोस्तों कभी उनकी मुस्कान देखकर दिल घबराने लगता है, तो कभी उनकी आंखों में देखते ही सारी दुनिया धुंधली सी लगने लगती है। ऐसा लगता है मानो दिल अपने एहसास छुपाना भी चाहता है और उसी पल उन्हें बता देना भी चाहता है। उनकी सामने साधारण बातें भी खास लगने लगती हैं और छोटी सी मुलाकात भी लंबे समय तक यादों में बस जाती है।

तो दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म तेरे घर के सामने से। गायक है मोहम्मद रफ़ी, गीत हसरत जयपुरी का तथा संगीत SD

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर अप टू 80,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
2: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
3: लीजिए अब सुनिए गीता दत्त को फिल्म प्यासा में। साहिर के बोल को सुरों में पिरोया है SD बर्मन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में सुनते हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का ये गाना। गीत शैलेंद्र के तथा संगीत शंकर जयकिशन का है।

लीजिए अब सुनिए फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वरों में सुनते हैं फिल्म दिल दे के देखो का ये गाना। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म समाधि का ये गीत। गायिका है लता मंगेशकर, गीत मजरू सुल्तानपुरी के तथा संगीत आर डी बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा, बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहन शक्ति परीक्षण PMET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज FS अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराज

0: पत्रित सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर के लिए एक पद जो केवल ओबीसी वर्ग के लिए होगा। ग्रुप सी फायरमैन पीसी एफएस के लिए कुल पद है 77, अनारक्षित वर्ग के लिए 41 पद, 29 पद ओबीसी वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद रखा गया है। पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एफएस कुल पद है 17, अनारक्षित वर्ग के लिए 7 पद, 6 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद होगा। सफाई कर्मचारी एफएस के लिए कुल पद है 2, ओबीसी वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है। फॉलोवर कुक एफएस के लिए 1 पद है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रखा गया है। फॉलोवर दफ्तरी के लिए 1 पद रिक्त है जो अनारक्षित वर्ग के लिए होगा। इंडिया रिजर्व बटालियन IRBN अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए 1 पद है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए होगा। ग्रुप सी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए कुल पद है 29, अनारक्षित और ओबीसी वर्गों के लिए 12-12 पद है। ST अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद रखा गया है। कांस्टेबल वायरलेस के लिए कुल पद है 2 जो अनारक्षित वर्ग के लिए होगा। नर्सिंग असिस्टेंट, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल वाटर कैरियर, इन सभी पदों के लिए 1-1 पद है जो केवल अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। ST और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। EWS, MSP, ESM भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़े।
1: पुलिस विभाग में विभिन्न ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई की मध्य रात्रि तक कर दी गई है। पात्रता की शर्तें और अन्य निर्देश संदर्भ के लिए उपलब्ध पूर्ण भर्ती सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए संशोधन खिड़की 28 मई की मध्य रात्रि तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है।
0: इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
2: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं और माइलेज भी बढ़िया है। 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
3: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
4: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours.

अभी आप संवेद स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय

0: मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए
0: नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न

0: क्षेत्रों में भारत के रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच। और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इसे कैसे

0: भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़ी जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112331444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए, तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है? धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की जरूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस QR कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो QR कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है।

0: हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
0: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
2: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
2: सॉरी जी,
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुंचा दूंगी।
2: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है

0: से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
1: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी।
1: सॉरी जी,
0: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुंचा दूंगी।
1: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में मकान के बारे में उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे थे मिला है इसके बारे में भी।
0: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे।
2: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में। तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एन्यूमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
0: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
2: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
0: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
2: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
0: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
3: जी नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार।
3: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
2: नमस्ते। प्रणाम।
3: मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
2: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।

0: आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहां पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश चली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: वैशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहां पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: जी अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है, और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहां पे रहता है वहां पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहां पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ।

0: हरिद्वार से। जी रवि जी।
1: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा अभी ज्वालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
0: जी नमस्कार।
1: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
2: नमस्ते।
1: जी मैम मैं जानना चाहता हूँ जी, जो हम जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
2: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
0: और अभी कॉल लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी
3: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: मैम मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधू अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंटर किया जाएगा?
2: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
0: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहां पे रहती है वहां पे उसको गिना जाएगा।
0: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
4: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार।
4: और आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
2: जी नमस्ते।
4: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे देख के अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा? उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
2: तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, तीन चार दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
0: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जेजे कलस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
2: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है। जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर

0: विषय आज हमने रखा है क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331 0481 पर और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371 0417 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रिशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
1: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनकी उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
0: जी अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
0: जी।
1: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था। क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
1: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा, जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
0: हाँ विशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहां पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गांव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहां पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहां पे रहता है वहां पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में 2 घर है, यहां पे 1 घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहां पे रहते वहां पे आपकी गिनती होगी।
0: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
3: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
1: जी तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है।

0: ज्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अभी कौन लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
2: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं, तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियां बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल जरूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है और आपका मकान न गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 10:01 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

आते हैं। कार्यक्रम संदेशी आते हैं में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म बादल से। गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह, जसविंदर नरोला और अनमोल मलिक ने। गीत समीर के तथा संगीत अनु मलिक का है। पसंद करने वाले श्रोता है जंगली घाट से रितिका और तनिष्क।

लीजिए, आप सुनिए। प्रतापपुर से सुभद्रा, योगिता और राकेश की पसंद पर फिल्म हमारा दिल आपके पास है का ये गाना, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है संजीव दर्शन ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म सरगम के गीत को सुनने के लिए हमें संदेश भेजा है अष्टिनाबाद से मोहित ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह को फिल्म बॉबी में। विठ्ठल भाई पटेल के गीत को संगीत सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले श्रोता है कलिकट से मनोज आनंद और ललिता।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर वर्षा हुई। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमानी बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में वर्षा होगी। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमानी बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर पर तेज हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 22 मई तक समुद्र में ना जाएं। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

माइक वन, इस समय सवेरे के 4:38 और 18 सेकंड हुए हैं, 19:20:21। माइक टू, इस समय सवेरे के 4:48 और 27 सेकंड हुए हैं, 28:29:30।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:28 व 38 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में हम अपने सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: अनमोल विचार।
1: विश्वास और मेहनत मिल जाएं तो असंभव भी संभव बन जाता है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन राह भी पार कर लेता है और मेहनत उसकी सफलता की कहानी लिखती है। चमत्कार अचानक नहीं होते, वे विश्वास, धैर्य और लगातार मेहनत का परिणाम होते हैं।
0: ये था अनमोल विचार और अब श्रोताओं आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। आगाज मातृ वंदना के साथ।